0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: पंकज जी कोटा से।
2: राधे
1: राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ यात्रा करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह है, कण कण में है, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं? महाराज जी,
3: मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तो हम तुम्हें समझे नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए, तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी, इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं, तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना, तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति। तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता, दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की, वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में, ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आयो, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो, जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ, इधर उधर सब गंदगी करो तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए, वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए, अगर 3 दिन वास करे तो 1 दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन

0: नहार करना चाहिए, एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर, एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक। लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिलाप कहाँ मिल पाएगा। तो सोच पाते जरूर जाना चाहिए।
1: तो महाराज जी जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है।
0: आप हमारी बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का, और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला, शरीर तो छूटना ही था लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई?
1: लाभ।
0: हाँ, तो हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर जलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया, करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया, या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, युवा खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम आह, नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था। और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था, तो एक थैली मिली असरफियों की। तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देख ये थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं, चाहे ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तो उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था, और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी,
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
10: श्रोतागण, भक्ति गीत के बाद स्वागत बा रउआ सबके, और ये कार्यक्रम अभी शुरू हो रहल बा आपन देह आपन देखभाल। जय में हम है राउर दोस्त दीपाली, तो सबसे पहले स्वीकार करें हमार प्रणाम, सुप्रभात। तो दोस्त लोग, रउआ तो पता ही बा कि एक कार्यक्रम में हम बतावेनी कुछ उपयोगी घरेलू नुस्खा, तो हाँ, आज भी हम लेके आ गइल बानी ऐसने कुछ नुस्खा। आज हम बतावे जात बानी सबसे पहले जटामांसी के बारे में। दोस्तों, जटामांसी से पाचन सुधरेला, त्रिदोष के नाश होला तथा त्वचा और रक्त विकार में लाभ होला। जटामांसी कसैली, तीखा रस वाला, संदिग्ध और तीक्ष्ण गुण से युक्त होला। अनिद्रा, हृदय रोग, वमन, अरुचि, ज्वर, हिस्टीरिया, मिर्गी, दंत रोग, सूजन, मस्तिष्क रोग, स्मृति विभ्रम, स्मृति की कमजोरी, मूत्र रोग, मासिक स्राव की अनियमितता, आक्षेप, पीलिया, गैस व नेत्र रोग की दूर करेला। रक्त संचार सुधारेला, पेट दर्द, वमन और कुष्ठ आदि रोग के मिटावेला। आयुर्वेद में एके इहे गुण बतावल गइल बा। यूनानी तिब्ब के अनुसार ई दिल,

पौष्टिक और बलदायिनी भी होला। ई बाल के काल भी करेला। हृदय के बेचैनी, पेट में अफरा तथा मासिक धर्म संबंधी अनेक कष्ट के नष्ट करेला। जटमानसी नेत्र ज्योति भी बढ़ावेला। चलिए दोस्त लोग, जानल जाओ कि जटामांसी के प्रयोग से कौन कौन बीमारी से निजात मिल सकेला। नपुंसकता में समान मात्रा में जटामांसी, लौंग, जायफल और सौंठ लेके चूर्ण तैयार करी और दिन में 2 से 3 बार एक एक चम्मच के मात्रा में ली। मसूड़ा के रोग में जटामांसी के चूर्ण बारीक करके रोजाना मंजन की तरह दांत पर मली और मसूड़ा के मालिश करी। ऐसा करे से दांत, मसूड़ा के दर्द, खून और पीव आवल, मुंह की बदबू तथा दांत के दर्द आदि रोग समाप्त हो जाए। दर्द होके पे सौंठ, आंवला, काला नमक और जटामांसी के चूर्ण समान मात्रा में लेके दिन में 3 से 4 बार सुसुम या गर्म पानी से सेवन करे से पेट में होके वाला दर्द मिट जाला। निद्रा में जटामांसी की 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ रात के सूते से 1 घंटा पहले ली। हाई ब्लड प्रेशर होके पे जटामांसी, अश्वगंध और ब्राह्मी ये तीनों के समान मात्रा में लेके चूर्ण बनाई और दिन में पानी के साथ 2 से 3 बार सेवन करी। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाए। धड़कन बढ़े पे सुबह शाम 1-1 चम्मच दालचीनी में 1/2 चम्मच जटामांसी के चूर्ण और 1 चुटकी कपूर मिला के रोजाना ली और जब तक दिल की धड़कन सामान्य ना हो जाए यह खुराक लेते रही। मिर्गी रोग होके पे जब मिर्गी रोग में दौरा पड़े और रोगी बेहोश हो जाए तजटा मांसी के चूर्ण नथुना में लगा के सुंघाई। चेहरा के त्वचा में निखार लावे और एके बरकरार रखे खातिर गुलाब जल में जटा मांसी के जड़ के घीस के चेहरा पर लेप करी आ 1-2 घंटा के बाद चेहरा के पानी से धोली। ई करे से चेहरा में निखार आई। हिस्टीरिया ये रोग प्राय स्त्री के होला जेकर मुख्य कारण तनाव ही मानल गई बा। 4:2:1 के अनुपात में जटामांसी के जड़ के चूर्ण, वज के चूर्ण और काला नमक मिला के 1 सप्ताह तक रोजाना शहद के साथ 1/2 चम्मच के मात्रा में दिन में नियमित रूप से ली।

0: रहल हा जटामांसी से जुड़ल कुछ नुस्खा। अब चली जान लियल जाओ हरड़ के कुछ नुस्खा। अस्थमा रोग में यानी दमा में रात के समय हरड़ के रस चूसे से दमा के शिकायत दूर होला। यदि हरड़ के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक भी चूसी तो हरड़ के कसैला और कड़वापन काफी हद तक मिट जाई। दस्त और पेचिश में पुराना दस्त और पेचिश से राहत पावे खातिर अधपका हरड़ के 4 ग्राम गुद्दा में थोड़ा सा लौंग और दालचीनी के चूर्ण मिला के शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करी। कब्ज होखे पे आयुर्वेद में कब्ज के अनेक रोग के मूल कारण मानल गईल बा। 2 से 3 हरड़ के पिस्टी या हरड़ के 6 फल के काढ़ा बना के उसमे लौंग और दालचीनी के चूर्ण डाल के ये दोनों की मात्रा 4 ग्राम रात के सूते से 1.5 घंटा पहले ली। अपच अफरा और पेट दर्द में यदि छोटा हरड़ के भून के उसके चूर्ण 1 चम्मच में थोड़ा सा काला नमक मिला के सेवन कर जाए तो ये सब लक्षण शांत हो जाए। घाव होके पे हरड़ के भून के उसके बारीक चूर्ण बना के उसके छान ली। आ इस चूर्ण में इमली के पानी डाल के बारीक पेस्ट तैयार करी और ये प्रभावित उंगली पर लगाई। हरड़ में सैकड़े के गुण और इमली के एसिड जनित प्रभाव दोनों मिला के घाव के शीघ्र सुखा दी। रोग में हरड़ की काढ़ा तैयार करके उसमें पानी मिला के आँख धोए से आँख के कई रोग नष्ट हो जाला। ऐसे लालिमा सूजन और दर्द आदि लक्षण के भी शमन होला। हरड़ बाल खातिर एगो टॉनिक के समान है। हरड़ के गुद्दा पीस के नारियल के तेल में तब तक धीमा आंच पर पकाई जब तक हरड़ के सार तेल में समाहित ना हो जाए। आ ई तेल के बाल के जड़ में रोजाना मालिश करे और ये लगावे से बाल मजबूत होला और ये ओकर रंग भी काला होखे लागेला। उसे सप्ताह में 1 से 2 बार हरड़ के काढ़ा से बाल के धोए से भी बाल काला और दोष रहित हो जाला। बवासीर में ताजा हरड़ की एरंड के तेल में सुनहरा ब्राउन रंग हो जाए तक भुनी, फिर ओकर चूर्ण बना ली। फिर जुबान पर 1/2 चम्मच चूर्ण रख के उसके चूसी और थूक के साथ धीरे धीरे अंदर जाएगी। ऐसे कब्ज दूर होई और अंततः बवासीर के नाश भी हो जाए, बवासीर के मस्सा भी दूर होई। दोस्त लोग हरड़ के प्रयोग करते समय मिर्च तेल तथा चरपरी तीखा एवं उत्तेजक वस्तु के सेवन ना करें तो शीघ्र लाभ हुई। दोस्त लोग ई रहल है आज के आपन कार्यक्रम आपन देह आपन देखभाल जिमे हमनी के जननी है सन जटामांसी और हरड़ से जुड़ल कुछ नुस्खा। अब दी हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति। आ रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: हेलो आप आ गए? ओके 2 मिनट में आई।
12: प्रिया कहाँ जा रही है अभी?
11: अरे मम्मा अभी नहीं यार, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वापस आकर बताती हूँ।
12: अरे पर प्रिया तेरी शादी है।
11: हाँ मम्मा इसीलिए तो।
13: अरे ये चेंज नहीं है।
14: सॉरी सर चेंज नहीं है और कार्ड मशीन भी काम नहीं कर रही है।
13: अरे पर मैं,
14: आप देखिए ना अगर कोई कस्टमर आपको हेल्प कर सके तो।
13: ओके हाय, आपके पास कुछ चेंज मिलेगा?
11: हाँ ये लो।
13: थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस।
11: कांग्रेचुलेशंस क्यों?
13: आपकी शादी है ना?
11: आपको कैसे पता?
13: अरे आप ड्रेस्ड अप हैं पूरी, मेहंदी रिंग, पता तो चल ही रहा है।
11: ओह हाँ थैंक्स, बट पता नहीं शादी होगी भी या नहीं।
13: मतलब आप शादी नहीं करना चाहती?
11: ऑफ कोर्स चाहती हूँ। क्या आपके पास कुछ टाइम है? I mean, मेरे साथ बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए, मुझे थोड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए।
13: हाँ हाँ बिल्कुल, कहिए ना क्या हुआ?
11: आप एक स्ट्रेंजर हैं, ऐसी रैंडमली मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, बट आपको देख के लगा शायद आप हेल्प कर सकते हैं।
13: I'll be more than happy to do that, ma'am.
11: मैम नहीं प्रिया, और आप?
13: I'm नील।
11: नील एक बात बताओ, अगर तुम किसी से बहुत प्यार करते, सब परफेक्ट होता, शादी होने वाली होती, फैमिलीज खुश होती, और सडनली तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जिससे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम क्या करते?
13: एक्चुअली मैं जरा भोला हूँ, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस मुझे समझ में नहीं आते। आप सीधे कहिए ना प्रॉब्लम क्या है।
11: यार मैं ना बहुत प्यार करती हूँ, क्या क्या नहीं किया मैंने उसे पाने के लिए, फिर वो मुझे मिल गया और अब हमारी शादी है, क्या करूँ?
13: आप शादी नहीं करना चाहती?
11: नहीं नहीं मैं तो चाहती हूँ, पर आज सुबह ही उसने मुझे बताया कि he has lost his job, मतलब सब सही था, उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता। मैं कैसे रिएक्ट करूं समझ नहीं आ रहा। कल शादी है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, सब खुश हैं, मैं भी फैमिली भी, क्योंकि लड़का अच्छा है सेटल्ड है, पर अब ये देखो मैंने बचपन से ही ना अच्छी लाइफ जी है, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, पैम्पर्ड हूँ हमेशा से, अब अचानक शादी से पहले उसने जॉब छोड़ दी, हमारा फ्यूचर कितना इनसिक्योर लग रहा है। क्या मैं अभी शादी तोड़ सकती हूँ? क्या ये ठीक रहेगा? क्या वो ये समझेगा?
13: उनसे प्यार करती हैं या उनकी सिक्योर्ड लाइफ से?
11: ऐसा नहीं है नील, मैं बस प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ।
13: प्रिया पर अगर आप उनसे प्यार करती हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो आप क्या हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते?
11: देखो वैसे तो शिव पार्वती जैसी परफेक्ट जोड़ी है हमारी, पर प्रैक्टिकली सोचो नील मैं कैसे एडजस्ट करूंगी।
13: शिव पार्वती जैसी जोड़ी है तो क्या सोच रही है मैडम, जाइए जाकर शादी कर लीजिए।
11: अच्छा अगर पार्वती जी को सिर्फ जॉबलेस मिले होते तो वो कर लेती शादी? कभी कभी सुना है ऐसा?
13: हाँ बहुत फनी है प्रिया, शिव जी और पार्वती कैसे मिले ये जानती है? उनकी कहानी जानती है आप? एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। कई युग पहले तारकासुर नाम के एक राक्षस से सारे देव परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास चले गए।
6: प्रणाम ब्रह्मदेव।
15: प्रणाम इंद्रदेव, आप इतना चिंतित क्यों हैं?
6: ब्रह्मदेव, मेरी चिंता का कारण तारकासुर है। वो देवों से युद्ध कर रहा है किंतु कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा है। आप ही कुछ कीजिए ब्रह्मदेव।
15: तारकासुर को ईश्वर ने वरदान दिया है। तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है।
6: किंतु महादेव तो देवी सती के मृत्यु के शोक में है।
15: जानता हूँ, महादेव योगी बन चुके हैं, इस संसार से परे हो गए हैं।
6: अब क्या करें ब्रह्मदेव, आप ही बताइए।
15: मैं देवी माँ को प्रसन्न करके उन्हें पुनर्जन्म लेने का निवेदन करूँगा, बस वो ही हमें बचा सकती है।
13: इसके बाद ब्रह्मदेव ने माँ शक्ति को प्रसन्न किया और देवी माँ इस धरती पर वापस जन्मी, राजा हिमावत और मेनका की बेटी पार्वती के रूप में। पर पार्वती को अपना पिछला जन्म याद नहीं था, फिर भी वो बचपन से ही शिवजी की सबसे बड़ी भक्त थी। फिर एक दिन

0: मेनका, पार्वती कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है।
1: शिवजी की पूजा में विलीन है वो। क्यों, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं?
0: मेनका, चिंतित क्यों नहीं होऊंगा? पार्वती का हाथ मांगने कितने राजकुमार आ रहे हैं, किंतु वो सबको ठुकरा रही है। क्या तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रही है?
1: मुझसे तो कुछ कहा नहीं है उसने। एक काम करते हैं, अभी पूजा समाप्ति होने वाली है, फिर पूछते हैं उसे।
2: प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता, आपने मुझे बुलाया?
0: पुत्री पार्वती, तुम्हारे लिए बड़े बड़े राज्यों से संबंध लेकर आ रहा हूं, पर तुम हर बार उन्हें ठुकरा देती हो। क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया?
2: पिताश्री, मुझे किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना।
1: तो क्या तुम्हारे मन में कोई और है?
0: हाँ पुत्री, बताओ। मैं वचन देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा।
2: जी पिताश्री, वो महादेव।
1: महादेव,
2: क्या हुआ पिताश्री, कुछ बोलिए ना, आपने वचन दिया है।
0: हाँ पुत्री, वचन तो दिया है, और देवों के देव महादेव से मेरी पुत्री विवाह करेगी तो मुझे प्रसन्नता ही होगी, किंतु ईश्वर अभी भी सन्यासी हैं, वो देवी सती के शोक में डूबे हैं, उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है पुत्री।
2: पिताश्री, आप बस मुझे महादेव की सेवा करने का अवसर दीजिए, मैं तो उनके चरणों में भी रहकर खुश रहूंगी।
0: किंतु पुत्री,
2: आपने वचन दिया है पिताश्री।
0: ठीक है पुत्री,

0: जय शंभो, जय जय शंभो।
1: हिमावत राज, क्या कोई विपदा आन पड़ी है? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
0: हे ईश्वर, ये मेरी पुत्री पार्वती है और प्रभु ये आपसे विवाह।
1: नहीं, मैं अपनी सती का स्थान किसी को नहीं दूंगा।
2: हे ईश्वर, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं देवी सती का स्थान नहीं लेना चाहती, मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए।
1: ठीक है, तुम मेरी सेवा कर सकती हो, परंतु मेरे ध्यान में तुम्हारे कारण कोई बाधा आई तो तुम्हें तुरंत कैलाश छोड़ के जाना होगा।
2: धन्यवाद महादेव, धन्यवाद।
3: ऐसे बरसों तक पार्वती शिव की सेवा करती रही। शिव जी कई दिन तक साधना करते थे और पार्वती बस उन्हें देखती रहती थी। पर यहाँ तारकासुर से परेशान होकर देव पार्वती और शिव को मिलाने के लिए कामदेव की मदद लेते हैं। कामदेव ने शिव जी पर अपने तीर चलाए और शिव जी की आंखें पार्वती पर पड़ी।
1: कितनी सुंदर लग रही है पार्वती, ये क्या सोच रहा हूं मैं? कामदेव,
2: क्या हुआ महादेव?
4: महादेव, क्षमा करें मुझे महादेव, मैंने केवल वही किया जो देवों ने मुझसे कहा।
5: तुमने मेरी साधना भंग की है, भस्म हो जाओ।
4: नहीं, ना, नहीं।
2: ये क्या किया महादेव आपने?
1: पार्वती, तुम्हारे कारण मेरी साधना में बाधा आई है। तुम शीघ्र ही कैलाश छोड़कर अपने पिता श्री के पास लौट जाओ।
2: नहीं महादेव, नहीं।
6: पुत्री, कौन हो तुम? इतनी युवा हो, इस वन में क्या कर रही हो?
2: मैं पार्वती हूँ ऋषिवर, मैं यहाँ ईश्वर की साधना करने आई हूँ।

0: विष्णुदेव, विष्णुदेव,
1: ब्रह्मदेव, आप यहाँ?
0: पार्वती ने जो वर्षों से साधना की है उसकी अग्नि देवलोक तक पहुँच गई है। कुछ कीजिए विष्णुदेव, उसे रोकिए।
1: जानता हूँ ब्रह्मदेव, किंतु ये शक्ति की साधना है, इसे केवल महादेव ही रोक सकते हैं।

0: स्वयं शक्ति हूँ। मैं ही सती थी ईश्वर, मैं ही आपकी सती हूँ।
1: सती, क्या पार्वती सच में मेरी सती है? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। मैं ब्राह्मण वेश में जाकर उसकी परीक्षा लूंगा।

0: ये शक्ति सती की शक्ति जैसी ही है, पर मुझे पहले परीक्षा लेनी होगी।
1: योगिनी, तुम्हारी साधना में बहुत भक्ति है, किसके लिए कर रही हो ये साधना?
2: ब्राह्मण, मैं शिव जी के प्रेम के लिए साधना कर रही हूँ।
1: तुम अपना यौवन उस भिखारी पर व्यर्थ कर रही हो, क्या मिलेगा तुम्हें? वो बस शमशान में घूमता है, वस्त्र भी नहीं है उसके पास, और तुम्हें उससे प्रेम है।
2: हे ब्राह्मण, देवों के देव है वो, महादेव है वो, उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनना मुझे। आप ब्राह्मण हैं और मैं प्रभु की साधना के समय कोई भी अपशब्द कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहती। मेरा और समय व्यर्थ ना करें, चले जाइए यहाँ से।
1: सोच लो पुत्री, एक बार और सोच लो, क्या सच में तुम उस शिव से विवाह करना चाहती हो, उसका प्यार पाना चाहती हो? अरे उसके पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या?
2: मैं महादेव से प्रेम करती हूँ, वो जो भी है जैसे भी है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और करती रहूंगी।
0: पार्वती, मैं हूँ तुम्हारा आराध्य ईश्वर।
2: ईश्वर, आप आ गए।
0: हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सती ही हो। तुम्हें पहचानने में देर कर दी मैंने, क्षमा कर दो मुझे।
2: नहीं नहीं महादेव, ऐसा ना कहिए, आप क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, मैं आप ही की सती हूँ, किंतु मैंने पुनर्जन्म लिया है और इसीलिए हमें फिर से विवाह करना होगा।
0: हाँ, मैं अभी तुम्हारे पिताश्री से बात करता हूँ।
3: इस तरह शिव पार्वती की शादी हुई और उनसे जन्मे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, और युगो युगों से शिव पार्वती साथ हैं। प्रिया।
4: हाँ,
3: क्या हुआ?
4: कुछ नहीं, वो मुझे कुछ रियलाइज हो रहा है।
3: नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कुछ रियलाइज कराने के लिए कहानी नहीं सुनाई।
4: पर नील, सच, जब प्यार है तो जॉब का क्या लेना देना? आई एम सो स्टूपिड, मैंने ये सब सोचा भी क्यों?
3: अरे तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने?
4: वो
5: प्रियम, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुम ठीक हो ना? कल शादी है हमारी, कल तक नहीं रुक पा रही थी।
4: हाय विनय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी।
5: हाँ बोलो।
4: वो मैं तुमसे शादी।
5: क्या तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती?
4: वो
5: क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है।
4: अरे स्टूपिड, बोलने दो मुझे।
5: बोलो।
4: मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मिलने का मन था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बात करने का। एक जॉब के लिए क्या तुमसे शादी नहीं करूंगी?
5: व्हाट, क्रेजी, तुम पागल हो प्रिया, आई लव यू सो मच। मैं तो जानता ही था। वैसे मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
4: हाँ कहो।
5: वो मेरी जॉब, आई मीन मैंने जॉब नहीं छोड़ी।
4: व्हाट?
5: हाँ, वो बस दिव्यांश के साथ में एक शर्त लगी थी, उसने कहा कि प्रैंक करके देखो, तो मैं तो जानता ही था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी जॉब से नहीं।
4: ओहो, खुद को क्या शिव समझते हो जो मेरी परीक्षा लोगे? एनीवेज, मीट नील।
3: हाय विनय, कांग्रेचुलेशंस।
5: थैंक यू सो मच।
3: मैं चलता हूँ गाइस, मुझे लेट होने लगा है।
5: ओह, बट लिसन डूड।
3: हाँ,
5: थैंक यू।
3: थैंक यू क्यों?
5: आई डोंट नो, बस ऐसा लगा कि अभी जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई हाथ जरूर है।
3: मैंने कुछ नहीं किया, जो किया शिव जी ने किया है। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ।
4: अरे नील, स्टे इन टच, ओके?
5: हाँ, शादी में जरूर आना।
3: जरूर आता, पर अभी तो मुझे अपने भोलेनाथ के धाम जाना है, अमरनाथ।
5: अरे घूमने जा रहे हो?
3: नहीं नहीं, अरे तुम भी आओ ना, हनीमून के बाद वहीं मिलते हैं। हर हर महादेव।
6: प्यार कोई सीजन सेल नहीं जिसमें स्टार कंडीशंस अप्लाई लगता हो। प्यार कोई म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस भी नहीं जिसे लेने से पहले रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़े। प्यार तो अनकंडीशनल होता है भिड़ू, और होना भी चाहिए। जिसने पैसों को सलाम और प्यार को बेनाम किया, उसने जिंदगी में सबसे बुरा काम किया। भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर इतनी भी नहीं कि तू प्यार भूल जाए। शिव खुल के प्यार करना सिखाता है, शिव बेपरवाह प्यार करना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा।
7: शिवा
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902। ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। जिले के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, विकास योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक, डिजिटल क्रॉप सर्वे का गोपालगंज से हुआ शुभारंभ, पत्नी की आत्महत्या के बाद दूसरे दिन पति ने भी कर ली आत्महत्या, स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी, सुबह 9 बजे होगा मुख्य समारोह का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा गोपालगंज में निकाली गई। इस दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में इस भव्य तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विधान परिषद के सदस्य और तमाम विधायक गण शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अंबेडकर भवन से यह भव्य तिरंगा यात्रा निकली और इसमें तमाम लोग भी इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने में अपना योगदान दिए। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित जिला प्रशासन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, माताओं, बहनों और NDA के कार्यकर्ताओं तथा आम जन की सहभागिता भी रही। सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ भारत माता का जय घोष करते हुए शहर का भ्रमण किया। तिरंगे की आन बान और शान के साथ निकली इस यात्रा के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। जगह जगह लोगों ने तिरंगे को लेकर उत्साह और गर्व दिखाया। यात्रा ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा अटूट संकल्प का जीवंत संदेश दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, वीर जवानों के बलिदान तथा करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करने का माध्यम है। इस तिरंगा यात्रा के दौरान प्रशासन ने गोपालगंज के लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। भव्य तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। आज जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में जिला के समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षात्मक बैठक की गई। जिले में विकास से जुड़ी सड़क, बाईपास, सिंचाई, पर्यटन एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई। बैठक में बरौली विधायक मंजीत सिंह, सदर विधायक सुभाष सिंह, विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार, जिला पदाधिकारी समीर सौरभ तथा 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बैठक में जिले के संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति को लेकर मंत्री महोदय को अवगत कराया। उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप कार्य पूरा कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। बैठक का उद्देश्य जिले में चल रही महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की वास्तविक प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को गति देना और आम जनता से जुड़े योजनाओं का लाभ समय पर उन्हें उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। इस दौरान विभागवार योजनाओं के प्रगति, कार्य आरंभ होने की स्थिति, भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य की गति, निर्धारित समय सीमा तथा कार्य पूर्ण होने में आ रही बाधाओं की जानकारी ली गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के लिए महत्वपूर्ण एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान बाईपास निर्माण योजना को प्रमुखता से रखा गया। प्रतिवेदन के अनुसार पथ प्रमंडल गोपालगंज के अंतर्गत 2 लेन पक्के शोल्डर सहित गोपालगंज बाईपास का निर्माण NH-27 से NH-531 तक किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कर कमलों द्वारा आज पूरे बिहार के लिए डिजिटल क्राप सर्वे का शुभारंभ हुआ। गोपालगंज की धरती से ही इस अभियान की शुरुआत हुई। इस डिजिटल सर्वे में खेत में लगे फसलों एवं उनके तस्वीरों सहित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे यह सटीक जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस किसान के किस खेत में कौन सी फसल लगी है। बिहार के सभी 38 जिलों में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और 30 सितंबर 2026 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गोपालगंज जिले में कुल 8,12,412 प्लॉटों का सर्वे किया जाना है। गुरुवार को माझा थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तकिया से मुंह दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे। मृत महिला बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव निवासी नेहा कुमारी थी। इनकी शादी करीब 5 वर्ष पहले भटवलिया गांव के सतीश प्रसाद उर्फ लालू पटेल से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। गुरुवार को उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच मायके वालों ने पति समेत परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इसी बीच पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। तब तक 24 घंटों के बाद शुक्रवार की आज सुबह मृतिका के पति का शव भी एक बगीचे में आम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि माझा थाना क्षेत्र के चंदन टोला में आम के बगीचे में पेड़ से लटकता हुआ मृत महिला के पति का शव आज लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला के पति के शव को भी आज कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। घटना के बाद से दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दंपति के एक बेटी है, जिसका इस घटना के बाद से ही स्थिति बुरा है, वह बेसुध पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद में इस दंपति ने आत्महत्या कर ली और अब आत्महत्या के बाद से दोनों ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्यों को एकत्रित कर अनुसंधान कर रही है। अब तक इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस के तरफ से इस मामले में क्या बयान आता है, इसका अभी लोगों को इंतजार है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में जिले में जगह जगह पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गोपालगंज वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह 9 बजे मेंज स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जहां जिलाधिकारी झंडा तोलन करेंगे। परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें काफी संख्या में लोगों की सहभागिता भी होती है और कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इन सब की तैयारियां की गई हैं। वहीं 10 बजे समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी झंडा फहराएंगे। इसके बाद 10:05 में अनुमंडल कार्यालय पर भी झंडा फहराया जाएगा और फिर नगर थाना, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और उसके बाद पुलिस लाइन में भी झंडा फहराया जाएगा। सिधवलिया थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह सिधवलिया के लरौली गांव के राजेंद्र प्रसाद का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर पहले से 2025 में चीटिंग का एक मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह आरोपी फरार चल रहा था। आज गोपालगंज के पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान स्वस्तिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का संचालन किया गया। पुलिस कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुनकर उसे समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि सुबह 11 बजे जदयू पार्टी के जिला कार्यालय हजियापुर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष झंडा फहराएंगे। साथ ही सभी प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा प्रखंड जदयू कार्यालय पर 10:30 बजे ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। इसको लेकर जदयू पार्टी ने भी सभी तैयारी पूरी कर ली है। नगर थाना की पुलिस ने पुलिस की टीम पर हमला करने वाले एक प्राथमिकी अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 2021 में केस दर्ज हुआ था, तभी से यह फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त इरशाद आलम को गिरफ्तार किया, जो नगर थाना के कोनवा गांव के अजीज मियां का पुत्र बताया जा रहा है। जादोपुर थाना की पुलिस ने अपराध नियंत्रण और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू किया था। इसी कड़ी में 2025 में हुई एक हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मंटू कुमार पिता लाल बाबू यादव, जो जादोपुर के सिहोरवा का रहने वाला है। इसे गुप्त सूचना के आधार पर सिहोरवा स्थित गंडक नदी के किनारे पुलिस ने इसके गांव क्षेत्र के आसपास से ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 2025 में गंडक नदी के किनारे एक किशोरी की हत्या कर उसके शव को बालू में गाड़ दिया गया था और इसी मामले में पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने बालू की खुदाई कर किशोरी के शव को बरामद किया था। मृत किशोरी आंचल कुमारी पिता लाल बाबू यादव साकिन सिहोरवा थाना जादवपुर की निवासी थी। प्रतिवेदन में पुलिस को जानकारी हुई कि आंचल कुमारी की उसके पिता लाल बाबू यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा गला दबाकर हत्या की गई थी। साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को नदी के किनारे बालू में गाड़ दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मंटू कुमार की संलिप्तता सामने आई थी और तब से यह फरार चल रहा था। अब मंटू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं को निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, विकास योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक, डिजिटल क्रॉप सर्वे का गोपालगंज से हुआ शुभारंभ, पत्नी की आत्महत्या के बाद दूसरे दिन पति ने भी कर ली आत्महत्या, स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी, सुबह 9 बजे होगा मुख्य समारोह का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क

डालिया डीजे

0: वेदौलिया
1: कृष्णा म्यूजिक से।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करे 7075763600 या 7075742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए
भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमई को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा
उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैपिटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल,
इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है, और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा, और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी।
जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत एक ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है, तब हमारी सातवीं धारा है, और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आयोग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत की क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें, और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है, वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है,
क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें काय आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम गढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है।
ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में, ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का
राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने
धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, आज युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी,
वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आगे करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं।
बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी दें

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था। उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से 3 रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते 3 रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और इस समय माननीय
1: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
2: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश चुकी है, युवाओं का देश है, और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से। वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली वाली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहां थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
2: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाई ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
3: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

सर मैं विक्रम साहब की वजह से जिंदा हूँ, घर आगे नहीं जाने दिया मुझे। बोले तेरी बीवी बच्चे, मेरा तो कोई नहीं है सर, धक्का मार के मुझे पीछे कर दिया।

सुनो, तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते। इस बार जरूर देखना, वरना जिंदगी भर यही खड़ी रहूंगी।

0: सबके सामने आंसू टपकाएगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
1: हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो?
2: जब तक सूरज चांद रहे

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: फिबुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765065।

0: DJ Bhavani Asuza.
1: DJ Vansi. आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
0: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।

0: देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात।
1: नहीं वागले, नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर जरूरत पड़े तो लात।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग...

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
7: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर

0: सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास, गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955497644।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ के टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस ₹89,815, HF डीलक्स ₹76,275, ग्लैमर X ₹101,354 और X3 125R ₹110,836 में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9774-86164।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86 034 48 652 पे।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
7: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

डीजे कृष्णा बेदौलिया।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच और यदि आप हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से पूरे रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और हमारे पास चलिए आप सभी के लिए पहले एक अपनी तरफ से सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद से आप सभी की फरमाइशों को पूरा किया जाएगा। तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा

0: अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग आई लव माई इंडिया, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मुझे भी मूवी से सॉन्ग सुना दीजिएगा। और आई एम केतन फ्रॉम महाराष्ट्र नासिक से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हाय भारती मैम, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली बिहार से, और बहुत लेट आए हैं। तो जी हाँ, लेट तो थोड़ा हो गया, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप सभी को फिर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी आपने। और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफा जी सऊदी अरब से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से, और मुझे 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे, हेलो आज मुझे भी एक गाना फरमाइश करनी है, और प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं, जुड़ दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को यह पहचान मिली, और 15 अगस्त के सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और साथ में पूरे नेशनल पर यह गाना सुनना चाहता हूँ, और जितने भी रिमझिम के दोस्त हैं सभी इसको सुनाना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले करने जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: इंडिया कंट्रीब्यूट

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007006575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714686164।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और दीपक चौहान सूरत से, और सॉन्ग सुनना है प्लीज़ सुना दीजिएगा। और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हेलो मैम, मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपको भी सॉन्ग सुनाएंगे आज। और इस स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा, इस स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा, 150 वर्षों की हार्दिक शुभकामनाएं। और नया पारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज भाई ठाकुर, इसर राज पप्पू ठाकुर और प्राची ठाकुर, देविका ठाकुर, साधना मोना ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे, आज 15 अगस्त पर हमें बॉर्डर मूवी का गाना सुना दीजिएगा, घर कब आओगे। और हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर सभी श्रोताओं और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुजीत कुमार बस्तर राजा लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। और यहाँ पे हमारे पास मुस्तफ़ा जी की तरफ से फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहा है, हुजूर मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ गाने की जो बोल पहुँची हुई है, अपनी आज़ादी को हम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग ने सुना मुस्तफ़ा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग अपनी आज़ादी को हम, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम, और आरजे अफसर सर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू और नाइस सॉन्ग।

लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग मैम, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनने और गाना सुना दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, सभी की फरमाइश आज पूरी की जाएगी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून जी, कैसी हैं आप? और मैं भी जुड़ गया हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है ये आपका पसंद, लाजवाब झकास। और सोहन सोनी और रोहित सोनी मेरे दोस्त हैं लो, और सुन रहे हैं लो, और ये भी कह रहे हैं लो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी रेडियो टीम की।

और मैसेज करने वाले हैं मनीष पांडे। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंची हुई है, बसंत ठाकुर जी की तरफ से, और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने के बोल हैं, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे की बिंदिया। तो चलिए बिना देरी किए इनके प्यारे से सॉन्ग को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है हाँ?
4: भरोसे वाले से लेंगे
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923।
12: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे यहाँ हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बोलिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से अभी दुबई से सुन रहा हूँ और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारतीय दी मैं प्रिया को दिल्ली से गाना सुनाना है और मैं धनेश कुमार मिश्रा का भतीजी हूँ और मुझे भी पहचान लीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं तैरना है तो समंदर में तैरो नदी नालों में क्या रखा है प्यार करना है तो वतन से करो बेवफा लोगों में क्या रखा है। और इसी के साथ जुड़े हुए हैं मनीष मिजाजी और विशुनपट्टी जानदार विशाली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखते हैं हाय नियम अंसारी जमतारा से और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को और आप सभी को भी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार राधे राधे और 15 अगस्त पर हमें बॉर्डर मूवी का गाना सुनना है प्लीज़ सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं घर कब आओगे। तो चलिए बिना देरी किए इनके प्यारे से सॉन्ग को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ सुजीत कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो क्लिक रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी मैं गाने का लिंक भेज दिया हूँ, ऊपर मैसेज भी कर दिया हूँ। मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से और भारती जी मेरा यह गाना देशभक्ति लिंक भेज दिया हूँ, ज़रा बजा दीजिएगा और इस गाने के साथ गुनगुना भी दीजिएगा और गाने को पूरा बजाने की कोशिश करिएगा और सोनी जी को हमारे तरफ से देशभक्ति गाना सुना दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस शो में और जी बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार प्रणाम, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ और आपको और रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को, हम जितेंद्र सिवान जिला से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम जी आपको ये रिमझिम रेडियो को तहे दिल से नमस्कार एवं बधाई स्वतंत्रता दिवस की, न्यायपारा विरई जिला बालोद से बसंत ठाकुर। और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नली या नालों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो अपने वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप, और आपको और सभी दोस्तों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और हम सभी ठीक हैं, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा, लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएँ आप सभी रेडियो टीम को। और मनीष पांडे जुड़े हुए हैं हमसे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने लिख रहे हैं, गाना बजा सकते हैं क्या, और गाना सुनना है ऐसा देश है मेरा, सभी देशवासियों को सुनाना चाहता हूं। और तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और गाने की बोल जो पहुंची हुई है बहुत ही खूबसूरत सा गाना है ऐसा देश है मेरा, तो चलिए प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 9774-86164।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहा है, मैं भी जुड़ गया हूँ मैम, साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ। और आप कैसी हो? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया कुचायकोट गोपालगंज से। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मेरा गाना कभी नहीं बजता है और आज बजा दीजिएगा प्लीज़ मैम। और गाने के बोल हैं माँ तुझे सलाम जी। आपकी भी गाने की फरमाइश आज पूरी हो गया, तो सभी की गाने की फरमाइश पूरी करूँगी क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और सभी लोग स्वतंत्र हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो कि अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, लिख रहे हैं भारती दी मेरा गाना बजा दीजिए कहीं जाना है। तो जी बिल्कुल आपकी भी फरमाइश पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ एक फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मैं केतन फ्रॉम महाराष्ट्र नासिक से जुड़ा हूँ और मुझे गाना सुनना है और गाने के बोल हैं ओ देश मेरे, तो प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में ये प्यारा सा सॉन्ग।
1: बल्ली कित है
2: ओ देश मेरे

तो अभी हम लोगों ने केतन जी की तरफ से सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, अरिजीत सिंह की आवाज़ में देश मेरे सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, माँ पूजावंती हॉस्पिटल बस्त्रा राजा लालगंज की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं डॉक्टर संतोष जैसल और डॉक्टर संगीता जैसल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, लिख तो नहीं रहे हैं लेकिन वॉइस के माध्यम से पहुंचा हुआ है, लेकिन वॉइस जब प्ले करना होगा तो प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्ते नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं मैडम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ साउथ अफ्रीका से और मुझे भी गाना सुनना है, और प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। और गाने के बोल हैं माँ तुझे सलाम। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग चल रहा था, माँ तुझे सलाम। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरी ये लाइन शामिल कर लीजिएगा, और लिख रहे हैं कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और लिख रहे हैं, याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, यह स्वतंत्रता हमारा है। और लिख रहे हैं कि कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ सबको गले लगाए, हम स्वतंत्रता का पर्व मनाए। और लिख रहे हैं कि जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुकेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैडम जी, नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून मैडम जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और ऑल आरजे, ऑल लिसनर और डेडिकेट सर को। और आज हमारे पुराने आरजे अफसर अली सर जी का बर्थडे है, और तो मैं अफसर सर, मेरे तरफ से अफसर अली सर को हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा। जी बिल्कुल। और लिख रही हैं कि जल्दी है मैसेज रीड कर दीजिए, और मैं प्रीति रायदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से बोल रही हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हम मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज, एमडी नौसाद, एमडी सदाम, और साथ में मोहम्मद निसार और मोहम्मद रिजवान और अभिनंदन टेलर भी जुड़े हुए हैं। कोई भी देशभक्ति भोजपुरी में बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप सभी के गाने प्ले होंगे, उससे पहले हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, भारती दी मैं प्रिया को दिल्ली से गाना सुनाना है, और मैं धनेश कुमार मिश्र की भतीजी हूँ। तो चलिए बिना देरी की आपके गाने को प्ले करेंगे, और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है, और गाने की बोल है ऐ मेरे वतन के लोगों, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। तो प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ऑनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यदि आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि भारती जी हमारा भी गाना बजा दीजिए, इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। उससे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुकिंदर जी, लाइन पढ़ने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय क्या हाल है, मैं भी फरमाइश भेजूँ, बजेगा क्या? और ज़्यादा भीड़ है तो बता दीजिए, बाद में भेज दूँगा। बोलिए तो ठीक है, निकलते हैं हम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और मैसेज करने वाले हैं अफसर अली, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी। बिल्कुल, आप भी अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं, और आज तो सभी को आज़ादी है अपने अपने गाने की फरमाइश करने को, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और प्रिया कुमारी का गाना सुन रहा हूँ, और गाना सुनाने के लिए दिल से धन्यवाद, धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, जो कि यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अमरीश कुमार जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मैम माँ पूजा अवंती हॉस्पिटल बस्त्रा राजलालगंज से जुड़े हैं, और डॉक्टर संतोष जैसल और संगीता जैसल जुड़े हुए हैं, और तिरंगा मूवी का गाना सुनना चाहते हैं। और चलिए तिरंगा मूवी से एक गाना प्ले करते हैं, और गाने की बोल हैं मेरी जान तिरंगा है, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। तो प्ले करते हैं गाने को और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

लिख रहे हैं भारती मैम हमार गनवा भी बजा दें तो जी बिल्कुल रहुआ गाना बाजी। और यहाँ लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं शो से, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए और सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। कपिल कोटा राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो हसुआ खुरपी गड़ासी से चीर फाड़ देंगे। और बहुत ही प्यारी सी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम मैं बबलू यादव डिस्ट्रिक्ट बनका बिहार से और मुझे भी गाना सुनना है दे दी हमें आज़ादी बिना बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं आरजे भारती जी आप हमारा गाना भूल गई हैं क्या? तो नहीं बिल्कुल नहीं भूली हूँ अभी मुझे याद है। और मैसेज करने वाले हैं दीपक चौहान और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है लिख रहे हैं गाने के बोल हैं मेरे रंग दी बसंती चोला। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमजम 90.4 FM में।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी के कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राजू वर्मा, जमुना बाजार गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मनीष पांडे जय हिंद, और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं ऐ मेरे वतन के लोगों ये सॉन्ग सुना दीजिएगा, और मैसेज करने वाले हैं मुकेंद्र कुमार जी। और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम जी गाना प्ले किए इसके लिए। और हमारे पास यहाँ जो कि अगली फरमाइश पहुँची हुई है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं इनकी वॉइस और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: गाना अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। नाम सगीर आलम अंसारी, तेजपुर आसाम से। धन्यवाद।
0: और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में, अपनी आज़ादी को हम भुला सकते नहीं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि सागिर आलम अंसारी जी लिख रहे हैं कि धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए बिना देरी किए फरमाइश को प्ले करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है और दोपहर न्यूज़ का टाइम भी होने ही वाला है। और लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, हम मंटू यादव बिहार अरे राज से, और एक गाना सुनना था और गाने के बोल हैं जलवा जलवा, और डेडिकेट है सुनील कुमार लाला जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुन्दर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
5: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
6: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर

0: BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आपका फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि निजामुद्दीन सूर्या सॉन्ग सुनाइएगा, और लिख रहे हैं 12 दिन। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दोपहर का लंच हो गया भारती जी, कोयल मैम जी अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर खा लीजिए, धन्यवाद। न्यायपारा बिरई जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, जय हिंद भारती जी, मैं राजू भारती पगवारा पंजाब से, और मुझे गाना सुनना है क्रांति मूवी का, और प्लीज़ भारती जी बजाइएगा ज़रूर, और आपको और अभी सुनने वाले को आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है कि इनकी तरफ से वॉइस पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या इनकी वॉइस और क्या इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं राजेश सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ, और गाना सुनवा दीजिएगा, लिंक भेज रहा हूँ।
0: तो गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, और गाने की बोल है मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। तो चलिए बिना देर के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने के बोल हैं मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ऐ वतन। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हाय हमें सुनना, मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और लिख रहे हैं कि दिन में गाने के बोल हैं दिल में बसे हो तुम आँखों में बसे आँखों में बसा लूँगी। और हम पूजा गोपालगंज से तो जुड़ चुकी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि जय हिंद भारती जी और राजू भारती पगवारा पंजाब से जुड़े हुए हैं और गाना इनको सुनना है क्रांति मूवी का। और इनके लिए बिना देरी के क्रांति मूवी का सॉन्ग प्ले करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM में। एंजॉय कीजिए गाने को।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। यदि आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। और हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि निजामुद्दीन जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए और पूरा सॉन्ग सुनाइएगा। और इनकी तरफ से गाने की लिंक पहुँची हुई है और गाने के बोल हैं, वह देश हमारा है, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम में शुरुआत से अभी तक श्रोताओं ने बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश किए हैं और उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और भारती मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से प्रोग्राम को चलाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस शो में। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि गुड आफ्टरनून मैम गोल्डन टेलर, हम थोड़ा देर से जुड़े हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और हमको भी एक गाना सुनना है, बजा दीजिएगा। और यहाँ

इनकी गाने को फरमाइश को बाद में प्ले करेंगे, उससे पहले जो कि हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से जुड़ा हूँ भारती मैम, और यह देशभक्ति गीत सुना दीजिएगा। और यहाँ गाने की लिंक पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि प्लीज़ बिना देरी किए मेरे गाने को प्ले कर दीजिए। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, और गाने के बोल हैं अब के बरस तुझे धरती की रानी। और बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: और यहाँ निजामुद्दीन जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया गाना प्ले करने के लिए, तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति देवी की नहीं, भारत माता की।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और सभी लिसनर और सभी आरजे को बोलिएगा हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो कि यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, हाय, हमें गाना सुनना है और हमें भी सुना दीजिएगा। और पूजा गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं और गाना सुनना चाहती हैं, और गाने के बोल हैं आँखों में बसे हो तुम। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी हम लोगों ने सुना पूजा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आँखों में बसे हो तुम, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से जुड़े हुए हैं, जो कि दुबई से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और गाने के बोल हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM-Z पर।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हेलो मैम, राधे राधे, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं हाजी यूपी चौवन से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि पूजा जी की तरफ से, उनका गाना प्ले किए थे, थैंक यू दी गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राज बाबू यादव अबू धाबी से लाइव सुन रहे हैं, और प्लीज़ देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी, आपकी भी फरमाइश को बिल्कुल पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं क्या खूब सॉन्ग है। और अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गोल्डन टेलर हम भी जुड़ गए हैं और हमें भी गाना सुनना है। और गाने के बोल यहाँ पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं जगता रहा भैया तू सोए मत जई हो। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोगों ने गोल्डन टेलर जी की तरफ से सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम अभी आप देखकर नाम मेरा लेती हैं क्या, कुछ और मत बोल दीजिएगा शो में। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और नहीं बोलेंगे, और जो आपका नाम है मैं वही बताऊंगी। और यहाँ पे लिख रहा है मैं रोजादीन अंसारी दुबई से, और मुझे गाना सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं कर चले हम फिदा, तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश आई हुई है। बिल्कुल आपका भी गाना प्ले होगा उससे पहले, जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है। लिख रहे हैं कि बंजारी रोड लालगंज एमडी नौसाद और मोहम्मद शदाम और साथ में निसार और रिजवान अभिनंदन टेलर सभी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बोल रहे हैं कोई भी देशभक्ति भोजपुरी में गाना प्ले कर दीजिएगा। और लिख रहे हैं भारती जी हमारा गाना प्ले ना होई का, तो ना ऐसा कोई बात नहीं, आपका भी गाना प्ले होगा। और गाने आपके लिए चलिए एक प्यारा सा देशभक्ति सॉन्ग प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ थैंक यू का मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं गाना सुनाने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहम्मद केरला से भी हैं, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग भोजपुरी में, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि आज़ाद कमाल घर बिहार जिला बेतिया जो कटिया 5 नंबर वार्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैं रोजादीन अंसारी दुबई से जुड़ा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM में प्यारा सा सॉन्ग।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ आज़ाद कमाल घर बिहार जिला बेतिया जौकटिया 5 नंबर वार्ड से जुड़े हुए हैं, जिनकी तरफ से कुछ वॉइस पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या इनकी वॉइस।
1: हमको अस्सलाम वालेकुम, हमको गाना सुनना है हिंदी गाना आँख से छलका आंसू, सुनाना है शमसुल आलम जो गोड़ा सामरा के हैं उन्हीं को सुनाना है, थोड़ा मैडम बजा दीजिएगा।
0: तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आज़ाद जी की आज़ाद कलाम कमाल जी की तरफ से। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम विष्णु कुमार वीके फास्ट फूड मशीन खास जिला सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से हमके गाना सुने बा और हम लिंक भेजा जानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अभी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गाना सुन के बहुत खुश हूँ। और चलिए आपको खुशी हुई। इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो पहले से लिख रहे हैं कि राजा बाबू यादव और अबू धाबी से लाइव सुन रहे हैं और प्लीज़ कोई भी देशभक्ति सॉन्ग चला दीजिएगा। तो जी चलिए बिना देरी किया है आपके गाने को प्ले करेंगे और जिनकी भी फरमाइश बची हुई है वो कल प्ले हो जाएगी। आज तो टाइम भी ख़त्म हो गया है। चलिए आप सभी के लिए लास्ट सॉन्ग प्ले करती हूँ। एंजॉय कीजिए रेडियो रंजीम 90.4 FM में।

श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने को। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इसी के साथ लूँगी आप सभी से विदा। और यहाँ हमारे पास सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गए हैं, तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग आप सभी।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम।
3: सुनो दिल।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी मैडम, जी मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: बस मैडम जी, आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और बारिश चल रहा है हमारे यहाँ पर। आप यहाँ चल रहा है क्या? बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर।
1: अच्छा, नहीं मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रही है, रात को हो रहा था।
2: अच्छा अच्छा, आना माना हो गया आपका?
1: हाँ, हम सबका हो गया। आपका हो गया?
2: जी हो गया हमारा भी।
1: चलिए तब तो बढ़िया है। तो आज बता दीजिए गाना कौन सा सुनिएगा।
2: गाना मैडम जी अल्ताफ राजा का है, ये गाना है थोड़ा इंतजार का मजा ले दिए।
1: और गाना सुनाना भी है
2: जी। सबसे पहले आपको और भारती मैम को, सोनी मैम को, आप कौन? मनोरमा जी है ना?
1: नहीं, मैं भारती बोल रही हूँ।
2: अच्छा अच्छा, भारती जी का। हाँ, सबका तीन ही मैडम को ये गाना डेडिकेट है। और गोपाल ओझा जी है और गजराज सिंह लोधी है और जितेंद्र धाकड़ जी है, इन सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट है
1: जी। ओके, फिर रेडियो।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: लाल बाग
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपना बताइए। 45 मिनट से मैं लगा रहा था, छोटा वाला मोबाइल है, जब लगेगा तो मैं सोचा कि अब एक बार और लगा कर देखना, लग गया। 45 मिनट लगाया।
1: अच्छा,
0: इतना ना बिजी बता रहा।
1: एकदम फरमाइश आ रही है आज कल के लिए।
0: बहुत बहुत ज्यादा आता जिसका नंबर लग जाए।
1: यही तो बात सही है। आपको कौन सा गाना सुनना है
0: आज? गाना नाम फिल्म का बता दीजिएगा
1: और गाने के बोल बता दीजिए।
0: नहीं तो ये तिरंगा फिल्म का गाना है, कुछ उड़ाने दीजिए। तिरंगा फिल्म में देशभक्ति गाना नहीं है?
1: हाँ है, कौन सा उसमें? तो मतलब
0: अरे वो लाइन याद नहीं आ रहा था। तिरंगा का
1: जो भी देशभक्ति सॉन्गों का मैं बजा दूंगी। ओके,
0: तो मैं वही गाना बजाइएगा जो कल जो बजेगा। मैं तो दो गाना और याद करके रहा हूँ।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि ये क्रांति फिल्म का गाना है, एक कर्मा फिल्म का गाना है, जो लगे वो बजाइएगा। और वो चार पांच गुड़िया है, रूबी है, करीना है, दो और लड़की है, वो लोग बोल रहे थे सुबह में, तो देशभक्ति गाना बजवाइएगा। मैं बोला की क्या लगेगा तो बजवा दे। चलिए
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
0: ठीक है, कोशिश कीजिएगा शाम को तक कल बन जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
13: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434403।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: The phone can be bajti hai to kehte hai hello.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
19: अस्सलाम वालेकुम मैम।
18: वालेकुम अस्सलाम।
19: रचना बोलता नहीं, पठानपट्टी से।
18: कैसी हैं?
19: ठीक बानी, अपन बताई।
18: हमने भी ठीक बानी।
19: नाश्ता तो बनी मैडम?
18: हाँ, नाश्ता हो गई बाबे।
19: अरे समाचार?
18: और ही सब तो समाचार ठीक बाबे।
19: ठीक बा, सब कुछ ठीक बनो।
18: बताई कौन सा?
19: झूठ बोले कौवा काटे।
18: अच्छा,
19: गाना सुना दी।
18: गाना सुना होंगे बच्चों के?
19: और सुन ले बा, कोई सुन
18: रेडियो रंजन में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
12: झूठ

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4। हेलो
1: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: गाना सुन
0: जी। नाम बता दीजिएगा अपना।
1: एमडी नूरजाल।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: पठानपुर।
0: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुना?
1: भोजपुरी गाना सुन रहा हूँ।
0: और भोजपुरी में कौन सा सॉन्ग?
1: पावर स्टार का। कौन सी
0: जी? और मतलब कौन सिंह का कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: नया और कोई बजा दीजिए।
0: अच्छा जी जी जी।
1: व्यापार गाना।
0: गाना किसी को सुनाना भी है?
1: भाभी को सुनाना है
0: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करेंगे। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM पर।
1: नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629335 38।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick your phone up.
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
7: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
7: सर कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
7: मैं ठीक है।
3: अभी तबीयत सही है?
7: हाँ ठीक है, कैसे क्या क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, जहाँ तक है वहाँ तो ठीक है।
3: अच्छा जी,
7: बारिश आपके यहाँ हो रहा है?
3: ना बारिश नहीं हो रहा है,
7: गर्मी तो है।
3: गर्मी तो है,
7: गर्मी तो यहाँ भी।
3: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: हमको गाना सुना दीजिए, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह वहीं पे नहीं। ठीक है।
3: और गाना सुनाना भी है?
7: गाना हम आप सुनिए और पूरे रिमझिम परिवार के लोग सुने।
3: जी,
7: नाम भी बता दें, नाम भी पूछ रहे हैं।
3: बता भी देंगे तो कोई बात नहीं।
7: मैदीन अहमद डुमरिया।
3: जी
7: ठीक है सर,
3: ओके। फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
7: कब सुनेंगे, कब आ जाएगा?
3: आज नहीं तो कल आ जाएगा।
7: ठीक है
3: जी,
7: ठीक है।

0: हेलो,
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं अच्छी हूँ। नाश्ता उस्ता हो गया?
0: हाँ, नाश्ता हो गया है,
2: अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है।
0: आप सब बताइए।
2: है ना?
0: हाँ हाँ, हम सब बढ़िया है। आप सब बताइए, आपका नाश्ता हो गया, आप सब कैसे हैं?
2: हाँ हाँ, हो गया है ना। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा रेडियो रिमझिम सुनती हूँ।
0: जी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।
2: वेलकम।
0: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: आज मुझे गाना सुना दी सौगंध मूवी का है ना, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, ऐसा कोई सॉन्ग
0: है?
2: वही सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगी किसी को?
2: हाँ, सुनाना चाहूंगी ना, सबसे पहले तो आप
0: सुनेंगे,
2: सुनने वाले हैं तो सुनेंगे।
0: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
12: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है।
16: जिला भागलपुर से ग्राम पल्लव से बात कर रहे हैं।
14: जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
16: बॉर्डर फिल्म का।
14: और कौन सा उसमें का सॉन्ग?
16: संदेश से आते
14: हैं। और गाना सुनाना भी है?
16: इसमें
14: भी। अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: बोल रहे थे गाना सुनना है।
1: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: है वतन तेरे लिए।
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: हाँ, पहले आपको है, उसके बाद है फिरोज आलम, जमशेद आलम, अरमान आलम, इरफान आलम, तैयबा खातून।
1: अच्छा, वैसे आप भी अपना नाम बता दें।
0: मेरा नाम शमशेर आलम है।
1: अच्छा जी, और कहाँ से हैं आप?
0: सासाम से कैथोलिक।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर।

0: किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: Now pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
4: Pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
6: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो।
9: हाँ,
8: नमस्कार मैम।
9: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
8: मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, पूर्व जिला देवघर, झारखंड से मैम।
9: जी, क्या हाल चाल है आपका?
8: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
9: हम भी ठीक है
8: जी। 80वां स्वतंत्रता दिवस को आपको और रेडियो के पूरे टीम को बधाई मैम, अग्रिम में।
9: जी जी, आपको भी।
8: जी जी, आज सुना दीजिए मैम, भक्ति गीत ही। जी जी, देश प्रेमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में। नफरत की लाठी तो जान लालच के खंजर फेंको, मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो।
9: और गाना डेडिकेट भी है।
8: जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रिव्यू के पूरे लिसनर को, रेडियो रिव्यू के पूरे आपके RJ जितने हैं, सपोर्टर टीम को और हमारे विद्यालय जो जितने भी स्टाफ हैं, गणित उच्च विद्यालय, प्लस टू उच्च विद्यालय सिलगड़िया के जितने भी स्टाफ हैं, सबको सुनाना चाहता हूँ। और हमारे कुछ और दोस्त हैं, मदन कुल हैं, प्रभु कुल हैं, राजकुमारी हैं, कृष्ण कुल हैं, भोलानाथ कुल हैं, करण कुल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
9: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
8: जी जी मैम,

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम। हेलो।
0: हाँ, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: हमारा भी ठीक है।
1: और सब खाना पानी हो गया है आपका? जी ठीक है।
0: आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: आज देशभक्ति गाना सुना दीजिए।
0: गाने के बोल बता दीजिए
1: मैम। मैं अपना नाम बता दे रही हूँ, मनीषा कुमारी।
0: सुना
1: दीजिए।
0: हाँ, गाना बता दीजिए कौन सा।

0: चलाए तूने, तूने फसल जाए कैसे कोई ले जाए, गाय है तेरी
1: क्या
0: कमाई।
1: बात है। और
0: थोड़ा गला फंस गया है, गले में परेशानी है।
1: नहीं फिर भी अच्छा गा रही हैं।
0: कल सुना दीजिए।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: जी मैम, आपको और सोनी मैम को, और बात मैम आप भारती मैम बोल रही हैं?
1: हाँ।
0: सोनी मैम को और मनोरमा मैम को और विद्या मैम को और अपनी दीदी को और छोटे भाई को।
1: जी बिल्कुल।
0: और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को, सभी यार जी को।
1: ओके जी, फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी मैम, बाय मैम,
1: बाय।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
3: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
8: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो।
11: हेलो मैडम, नमस्कार।
10: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: मैं मनन बोल रहा हूँ ककुरा।
10: जी कैसे हैं आप?
11: हम तो सही हैं, आप कैसी हैं?
10: हम भी अच्छे हैं।
11: अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। अच्छे होते तो घर पर नहीं होते।
10: अच्छा नहीं, मतलब अच्छे हैं, ठीक है, स्वस्थ है, तभी तो आ रहे हैं।
11: क्या मैडम, आप तो बहुत दिनों के बाद मिली है यार, तो आज कौन सा गाना सुनवाइएगा? हम ही आपसे पूछ रहे हैं।
10: अच्छा, हाँ तो
11: सुनवाइए ना गाना। मिलेगा का नहीं? ताड़ बने नौ से खजूर बने दुल्हन।
10: एक बार और बोलिएगा।
11: ताड़ बने नौ से खजूर बने दुल्हन।
10: ढूंढने पे तो मिल ही जाएगा।
11: नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा हिंदी गाना सुनवा दीजिएगा।
10: जी बिल्कुल, नहीं मिलेगा तो सुना दूंगा।
11: तो एक गाना था हमको, ऐसा गाना है या नहीं है मुझे पता भी नहीं है।
10: कहीं सुने हैं?
11: कभी सुने नहीं है, लेकिन अपने से सोच के मैं बता रहा हूँ कि ऐसा गाना होगा क्या नहीं।
10: अच्छा ठीक है,
11: जरा सर्च मारिएगा। तो आपके तौर में बहुत से गाने आते हैं ना, नहीं गाए हैं? लगता है कि आप कुछ नाश्ता वास्ता भी कर रहे हैं क्या?
10: नहीं
11: ऐसा ही लगता है। लोगों से बताते हैं कि यहाँ नाश्ता हो गया है, खाना पीना हो गया है, आप खुद ऑफ कर रहे हैं। चलिए तो मैडम वही गाना सुनवा दीजिएगा।
10: ठीक है,
11: सच मारिएगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हिंदी गाना। ठीक है, नमस्कार।
10: नमस्कार, रेडियो रिंग से मैं कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
11: ओके थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
1: मैम गाना सुनना है।
0: नाम भी बता दीजिए।
1: हमारा नाम मौलादीन मियां है, मैं कैथोलिया के रहने वाला हूँ।
0: जी और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनने के भाई कर्मा फिल्म के
0: गाने के बोल
1: दिल दिया है जान देंगे गाना नहीं है कर्मा फिल्म का, वही गाना सुनना है।
0: और गाना सुनाना भी है
1: जी। जमशेद आलम है, तैयबा खातून है, हसीना खातून है, शहनाज खातून है, इरफान अली, अरमान अली, और ये सुना तब है रेडियो रिमझिम, वो सबको सुनवा एक बार होगा के सुनवा एक बार।
0: अच्छा जी
1: जी, कब सुना दे?
0: इधर हुआ काल ना था, आज सुने के मिल जाये।
1: अच्छा ठीक भाई, आज चाहे कल सुना दी। हमारे बहनो साहब बड़े फिरोज आलम वो सुनिया।
0: अच्छा
1: की बोलते नहीं रुआ मुनर्मा जी?
0: ना भारती।
1: अच्छा वहाँ के देखिए और कहा सोनी जी?
0: सोनी जी तो ना
1: साफ सपने हो गए वहाँ के। ठीक बा, लाइन लगी रहे लगी।
0: चलिए ठीक बा,
1: ठीक बा मैडम, सुना दी गाना है
0: रेडियो रूम से मैं कॉल करे खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?
10: अच्छा है,
9: क्या हो रहा है आपके?
10: अभी तो अच्छा, फोन लगा 12 बज रहा था।
9: अच्छा, कितना टाइम लग गया?
10: बहुत टाइम, सब कॉल किया। और समाचार बताइए कैसे है?
9: और समाचार ठीक है, आप सब ठीक है ना?
10: जी हम लोग ठीक है।
9: तो आज बता दीजिए फरमाइश अपनी।
10: फरमाइश राष्ट्रीय
9: गाने के बोल,
10: गाने के बोल।
9: अच्छा, और सॉन्ग सुनाना भी है?
10: जी आपको जितना आते हैं सब, जितना सोता दोस्त सुनते सबके साथ।
9: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
10: जी मैडम,
9: नमस्ते।

0: हेलो, सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। भारती मैम बोल रही हैं। एक बार तो पूरा कॉल रिंग होके कट गया मैम, ऐसा क्यों?
1: कुछ काम कर रहे थे।
0: क्या हाल चाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: हम लोग तो अच्छे हैं, आप अच्छे हैं ना?
1: हेलो,
0: योर वॉइस योर चॉइस चलेगा ना?
1: जी बिल्कुल चलेगा।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए, देखो दिन मूवी से, जब ना माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना।
1: कौन सी मूवी है?
0: देखो दी।
1: अच्छा,
0: काजल का
1: गाना कौन सा बोले हैं?
0: जब ना माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा। सुनाना है सबसे पहले आप सोनी मैम को, समरान रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, हरी को, असलम भाई को, किरज भाई को, और संसाद भाई को, बुखरा आनंद जी को, और जो भी रेडियो इंजिन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए मैम, जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से सभी को बोल दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: ओके मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो रंजिम में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87894 18744।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
13: जी मनोरमा जी,
14: नहीं भारती,
13: भारती जी बोल रहे हैं।
14: हाँ,
13: अमित शाह मास्टर।
14: ग्राम धनाव से।
13: जी क्या हाल चल रहा जी?
14: ठीक बार हुआ, बताए रहो कैसे बने?
13: हम ठीक है, जुम्मा की तैयारी होती है तो सर जी ने कॉल कर लिया।
14: अच्छा,
13: घर बहुत चली ना?
14: ना अभी कहाँ, अब ज्यादा नहीं शुरू करे।
13: कॉल कहाँ बने हैं?
14: ना अभी एक और ही दो को कॉल ले मोकरा बाद से।
13: हम 1 घंटे बाद जुड़ जम जाए 1:30 बजे के बाद।
14: चलिए ठीक है बाबा।
13: और सब सब परिवार सब मौसम क्वेश्चन बनवा देने।
14: मौसम तो अभी मैंने ठीक ठाक बाबे, न ज्यादा तेज धूप है न ज्यादा गर्मी
13: है। बारिश आई लगी जब तो गाना सुना दे
14: बता दी
13: बेताब मूवी के, जब हम

0: याद करेंगे। और सबसे पहले सुनाए बरुआ के और रामा जी के और जितना सुनने वाला बात अगर कोई सुनी है हमने के धनाव से सुनब गए।
1: गाना प्ले करते नहीं सुना रेडियो 90.4
0: ठीक है मैडम। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: रिंग। मुरालम बात कर रहे हैं श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: गाना सुनना है?
0: जी जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: खुशी का रिदम का टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा जी, और सॉन्ग डेडिकेट भी है।
1: हाँ जी,
0: बता दीजिए।
1: जिसमें सुनने वाले हैं साथो और मेरे रियाजुद्दीन और ताजुद्दीन मुरालम और मेरे दोस्त।
0: जी जी, और सब बताइए, और सब ठीक है घर में? सब कोई ठीक है?
1: हाँ जी बस ठीक है, मेरा घर उधर ही है।
0: आपका घर कहाँ है वैसे?
1: बरौली। बरौली।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिंगटन 90.4 FM।

0: नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: जरूर सुरेश होगा, आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। विवेक, तुम?
7: हाय दीदी।
8: ऐसा लगता है दीदी, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई?
6: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा सुरेश होगा।
8: अरे सुरेश तो इसी घर का बच्चा है, कभी भी आ जाएगा, उसकी राह देखने का क्या मतलब?
6: तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ।
8: तुम जरा खुलकर बात करो तो समझ में आए ना।
6: वो गुप्ता जी है ना?
8: गुप्ता जी? कौन गुप्ता जी?
6: अरे वही तेरे जीजा जी के मित्र, उनकी एक लड़की है।
8: लो, गुप्ता जी के यहाँ एक लड़की हो जाने से तुम क्यों परेशान हो रही?
6: अरे पूरी बात तो सुन।
8: अच्छा बताओ।
6: तेरे जीजा जी सुरेश की शादी गुप्ता जी की लड़की से करना चाहते हैं।
8: ये तो और भी अच्छी बात है।
6: ए, क्या खाक अच्छी बात है। आज जब गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ आए तो वो कहीं गायब हो गया। बेचारे गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ 2 घंटे बैठे उसका इंतजार करते रहे।
8: अब समझ में आ रहा है।
6: क्या समझ में आ रहा है?
8: यही कि एक और प्रेम और दूसरी और जालिम समाज, ऐसी हालत में हीरो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा?
6: बस तू तो अपनी हाँकने लगा। और तू जानता है कि तेरे जीजा जी कितने जिद्दी हैं? उन्होंने ये तय कर रखा है कि सुरेश की शादी अगर किसी से होगी तो वो गुप्ता जी की लड़की से होगी।
8: ओ
6: देखो तो सही। कौन आया है? अरे कहाँ चला गया था, कम से कम बता कर तो जाता।
9: माँ मुझे नहीं करनी है ये शादी।
6: नहीं करनी है शादी? ये बात तो अपने पिताजी से तो कह सकेगा ना।
9: यही तो मुसीबत है माँ, मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती उनके आगे। ओ मामा जी आप कब आए?
8: बस ये समझ लो कि अभी आया।
9: वैसे बहुत अच्छे समय पर आया हूँ भांजे।
8: अच्छा ये बता, गुप्ता जी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो किससे करना चाहता है?
9: वो मैं मामा जी वो
8: ऐसी बातें कम से कम माँ से तो छुपानी ही नहीं चाहिए।
6: हाँ हाँ बता दे बेटा, है कोई लड़की तेरी नजर में?
9: मैं माँ वो शादी करूंगा तो केवल सविता से ही करूंगा।
6: सविता?
9: कौन सविता? वो मेरे दफ्तर में टाइपिस्ट है माँ।
8: क्या ट्विस्ट आया कहानी में?
6: मैं समझी नहीं।
8: और समझोगी भी नहीं दीदी। ये कहानी मेरी फिल्म से कितनी मिलती जुलती।
9: मामा जी ये कहानी नहीं हकीकत है।
8: मेरे लिए एक ही बात है बेटे।
9: माँ अगर मेरी शादी सविता से नहीं होगी तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा।
8: तुम्हें अब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भांजे, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी नैया पार लगा कर ही रहूंगा।
9: माँ पिताजी आ गए।
6: तू अंदर जा, तुझे देखते ही उनका पारा चढ़ जाएगा।
9: अच्छा माँ। फिर तुम?
8: जीजा जी
9: पिछले महीने ही तो तुम यहाँ से गए।
8: बस
9: फिर तो ना पड़े।
8: बस 2-4 दिन के लिए आया हूँ, काम होते ही चला जाऊँ।
9: अरे तुम जब भी कभी आते हो
6: 2-4 दिनों के लिए तो आते हो,
9: और जब तक 2-4 महीने नहीं बीत जाते तुम खिसकने का नाम नहीं लेते।
6: आप आते ही पड़ गए हैं बेचारे के पीछे। कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं?
9: मेहमान? अरे कौन मेहमान? ये मेहमान है
8: जी।
9: अरे किसने बुलाया था इसको यहाँ? जब देखो चला आता है मुंह उठाए।
6: बस भी कीजिए बस, आपको तो जैसे मेरे घर वालों से बैर हो गया है।
9: देखो रुक्मणी, मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई बैर नहीं, परंतु अपने इस लाडले भाई से कहो कि अपना पागलपन अपने तक ही रखे।
8: जीजा जी जब तक इस कहानी को अंत तक न पहुँचा दूँ तब तक मैं इस घर से जाने वाला नहीं।
9: कहानी? कैसी कहानी? अरे रुक्मणी ये क्या बकवास कर रहा है, जरूर ये कोई शरारत करने वाला है। वो सुरेश कहाँ है?
6: वो अभी तक नहीं आया।
9: अरे झूठ क्यों बोलती हो, वो अंदर है मैं जानता हूँ, उसका स्कूटर बाहर खड़ा है।
10: सुरेश जी, जी
7: जी पिताजी।
9: अरे कहाँ चल

0: कहा गया था तू?
1: अच्छा,
0: तुझसे कहा गया था ना कि तुझे गुप्ता जी की लड़की देखनी है?
2: जीजा जी, इसने लड़की देख भी रखी है और पसंद भी कर रही
0: है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे सुरेश, तू कुछ कहता क्यों नहीं?
3: सुना सुना, आप इतना गुस्सा करेंगे तो बेचारा का मुंह कैसे खुलेगा?
0: वीरेंद्र बकवास तो नहीं कर रहा है?
3: नहीं नहीं नहीं, ये सच कह रहा है। सुरेश को एक लड़की पसंद है, उसका नाम सविता है।
0: आए?
3: उसके दफ्तर में टाइपिस्ट है।
0: अरे तुमको इतना सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया?
3: सुनो जी, लड़का नौजवान है, अगर जबरदस्ती की गई तो वो कुछ कर बैठेगा।
0: मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। सुरेश को समझा दो, समझा दो उसे कि वो शादी वहीं करेगा जहाँ मैं चाहूँगा।
2: जीजा जी, अब आप इस बढ़ते हुए तूफान को नहीं रोक सकते। हर युग में इसी प्रकार समाज में प्रेम का गला घोटा जाता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती
0: है। ये बात है, ये बात है तो सुन लो। अगर सुरेश अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे लड़की वालों से दहेज में 1,00,000 रुपया नकद लाने होंगे।
2: 1,00,000 रुपए? ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है।
0: ये सब मैं नहीं जानता।
2: ठीक है, अगर 1,00,000 रुपए आपको मिल जाएंगे तो क्या आप सविता को स्वीकार कर लेंगे?
0: अरे पहले 1,00,000 रुपए तो लाओ, फिर बात करेंगे। वो रुक्मणी, देखो मैं जरा अंदर आराम करने जा रहा हूँ, कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ।
2: 1,00,000 रुपए?
3: अरे वीरेंद्र, 1,00,000 रुपए कहाँ से लाओगे?
2: इसके बारे में बाद में सोचेंगे दीदी, पहले मुझे सुरेश से 2-1 प्रश्न करने हैं।
4: सुरेश
5: जी। जी मामा जी।
4: ये बताओ सविता देखने में कैसी है?
5: मामा जी आप खुद देख लीजिएगा ना, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ।
2: ठीक, कहाँ तक पढ़ी है?
5: एमए है।
2: गुड, रसोई का काम जानती है?
5: मामा जी बहुत ही अच्छे पकवान बनाती है, उसके हाथ के बने गाजर के हलवे का तो जवाब ही नहीं है मामा जी। पर मामा जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
4: अरे भांजे, यही 3 प्रश्न तो पूछे थे जीजा जी ने अपनी शादी से पहले। अच्छा ये बता, तू सविता को यहाँ ला सकता है?
5: क्यों नहीं मामा जी।
2: तो फिर जाओ, तुरंत उसे लेकर आओ।
5: ठीक है।
3: भई बता कि 1,00,000 रुपए का प्रबंध कौन करेगा?
2: तुम करोगी दीदी।
3: मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं?
4: झूठ मत बोलो दीदी, क्या तुमने माँ को यह नहीं लिखा था कि जीजा जी की जायदाद के पैसे पूरे 2,00,000 आ गए हैं?
3: ना बाबा ना, उन पैसों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। तेरे जीजा जी को अगर पता लग गया ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, अपने साथ तो मुझे भी पागल करके ही रहेगा।
4: अरे तुम कैसी माँ हो, अपने बेटे की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर सोचो दीदी, 1,00,000 रुपए कौन से घर से बाहर जा रहे हैं?
3: ये तो उन्हें जब पता चल जाएगा ना कि उनके साथ धोखा हुआ है
4: तो इससे क्या होगा?
3: कुछ नहीं होगा, तू तो मुझे इस घर से निकलवा के रहेगा।
2: दीदी अगर तुम अपने घर में बहू देखना चाहती हो तो तुम्हें ये सब सहन करना ही पड़ेगा। और फिर जीजा जी का गुस्सा है भी कितनी देर का, गर्म हुए बरसे और ठंडे पड़ गए।
3: ये तो ठीक है, पर ये पता चल जाने के बाद कि उनके साथ धोखा किया गया है वो फिर से अड़ गए तो?
4: यही पर तो मात खा रही हो तुम। अरे तुम अभी तक जीजा जी को समझ ही नहीं पाई हो कि वो कैसे आदमी है। अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके ना नहीं करेंगे, चाहे उनके साथ कितना भी छल क्यों ना किया जाए।
2: दीदी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, वो नाटक किया करता है, उसके पास मेकअप का सामान है और मैं मेकअप लगा कर तुरंत वापस लौटता हूँ, और तुम पैसे तैयार रखना।
3: ठीक है।
5: सविता ये मेरी माँ है, चरण छुओ ना।
6: नमस्ते माँ जी।
3: अरे अरे ये रहने दे बेटी, भगवान तुझे सदा खुश रखे।
5: मामा जी कहाँ है?
6: मेकअप करने गया है, आता ही होगा।
3: सुरेश तू पहले क्यों नहीं लाया सविता को इस घर में?
5: हिम्मत नहीं हो रही थी माँ, और डर भी लग रहा था कि सविता आपको पसंद आएगी भी या नहीं।
3: अरे इतनी सुंदर लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा।
6: लगता है वीरेंद्र आ गया है।
7: कैसा लग रहा हूँ दीदी?
3: ये क्या मेकअप कर रखा है, पूरे 60 साल का लग रहा है।
2: अरे देखा भांजे, तुम्हारे लिए क्या क्या स्वांग भरना पड़ रहा है।
5: मामा जी
3: अच्छा
2: तो ये सविता है।
6: नमस्ते मामा जी।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
5: ये मेकअप मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा जी।
2: भांजे, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं सविता का चचा जगमोहन बनकर जीजा जी से मिलूंगा और तुम्हारी शादी पक्की करवाऊंगा।
5: पैसे मामा जी वो?
2: भांजे, तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या लाभ। हाँ तो दीदी, पैसे कहाँ हैं?
6: ये रहा ब्रीफकेस, पैसे इसमें रखे हैं।
2: और इस डिब्बे में क्या है?
6: गाजर का हलवा, आज सुबह ही बनाया था। सुरेश ने कहा कि थोड़ा साथ ले चलते हैं।
2: ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ तो दीदी, जीजा जी से कहना सविता के अंकल जगमोहन उनसे मिलने आए हैं।
6: अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ।
5: मामा जी, यू आर ग्रेट।
1: भांजे। नमस्ते शर्मा जी।
5: नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: शर्मा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे शर्मा जी, मैं तो चाहता था कि सविता की शादी किसी अच्छे घराने में
5: जी,
1: हो।
5: लेकिन क्या हमारा घराना?
1: नहीं, ये बात नहीं है शर्मा जी, आपके घराने से अच्छा घराना मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं तो ये कहने जा रहा था। मैं तो भूल गया। हाँ, ये रहे आपके 1,00,000।
5: आप सचमुच 1,00,000 ले गए हैं?
1: शर्मा जी, आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आप देख लीजिए, पूरे 1,00,000 है।
5: हाँ जी,
2: आप ही के पैसे।
5: क्यों शर्मिंदा करते हैं आप?
1: जी नहीं शर्मा जी, पैसों के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और करना चाहिए भी नहीं।
2: तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
5: जी जी जी, हाँ जी हाँ, बिल्कुल पक्का समझिए साहब।
1: ये लीजिए तो मुंह मीठा कीजिए। सविता ने बनाया।
5: ओ, गाजर का हलवा। ऐसा बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है?
1: अरे जीजा जी, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी है?
5: जीजा जी,
1: मेरा मतलब है शर्मा जी। शर्मा जी, अब आपको क्या बताऊं कि मेरे जीजा जी की शक्ल आपसे कितनी मिलती जुलती है। एक बात की कमी है
5: जी। वो क्या?
1: उनकी मूछ नहीं। अरे मूछ तो मर्दानगी की निशानी होती है। अब आप ही बताइए शर्मा जी, मूछों के बिना आदमी अकलमंद नजर आता है।
5: भाई मुझे इसका क्या पता, मेरी तो कोई मूछ नहीं है।
1: इसीलिए तो कहता हूँ जीजा जी के आप
5: वही जीजा जी जगमोहन जी। जीजा जी, आपके मूछ को क्या हो रहा है?
1: हुआ कुछ नहीं है, वो खांसता हूँ ना तो हिलने लगती है।
5: ये हिल नहीं रही है।
1: नहीं, ये हिल ही रही है।
5: नहीं नहीं नहीं, नहीं जगमोहन जी, ये हिल नहीं रही है, बल्कि आपके चेहरे पर से छूट रही है, छूट रही
1: नहीं,
5: है।
1: जीजा जी, ये ऐसे ही हिलती है।
5: आ, ये आप ही कमाल करते हैं। ये देखिए, ये तो नकली है। जरूर तुम कोई पैरू क्या हो? बताओ बताओ, कौन हो तुम? वरना भी पुलिस को टेलीफोन करता।
2: अच्छा, पहले आप मेरी गर्दन तो छोड़िए।
5: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ये दाढ़ी भी तुम्हारी नकली ही रहोगी।
2: जीजा जी,
5: ये सब क्या क्या कर रहे हैं?
2: बस कुछ मत पूछिए, दो प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा।
5: और जी, ये 1,00,000
2: आप ही के हैं, दीदी ने दिए थे।
5: तो तुम भी इस नाटक में शामिल हो?
6: और क्या करती, आप तो अड़े हुए थे। इस समस्या को किसी न किसी प्रकार तो हल करना ही था।
5: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सविता पसंद है?
6: हाँ, नहीं तो?
5: तो तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपा रखा था? अरे रुक्मणी, कभी मैंने तुम्हारी पसंद को ना पसंद किया है?
1: जीजा जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
5: हाँ साले जी, पक्का ही समझिए। अरे भाई, बहू के हाथ का बना गाजर का हलवा जो खाना है।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारीलाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारीलाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारीलाल विजय कुमार।
4: मुरारीलाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
8: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
16: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
15: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
15: संपर्क करें 99393-65923।
17: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। सुनो दिल से।
18: आपकी फिल्म्स को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और नए नए गानों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी को दबाएं। धन्यवाद।
19: प्रेजेंटेड बाय भैया, हमनी के भारत के 17वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आरती फिल्म्स के माध्यम से एक छोट प्रयास कल गई बा। हमरा आशा ना पूरा विश्वास भैया, आप सबके प्यार दुलार जरूर मिली। जय हिंद, जय।

0: अगर आप लोगों को ये गीत पसंद आया हो तो हमारे आरती फिल्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
7: प्रसाद क्लिनिक।
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12-1 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12-1:30 के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 AM पर।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रमझिम,
11: सुनो दिल से।

0: दिल्ली के लाल किला पर फहराया तिरंगा, पहली बार वंदे मातरम का हुआ गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में अभियान बसेरा के तहत 30,000 भूमिहीन परिवारों के बीच बास्केट पर्चा का वितरण किया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव होगा। श्री मोदी ने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया ताकि देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात।
1: नहीं वागले, नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर जरूरत पड़े तो लात।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। दिल

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
7: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
11: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अनुसंधान वैज्ञानिक कुल पदों की संख्या 14, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 कुल पदों की संख्या 2, परियोजना वैज्ञानिक बी कुल पदों की संख्या 8, परियोजना एसोसिएट ग्रेड 1 कुल पदों की संख्या 4, परियोजना एसोसिएट 2 कुल पदों की संख्या 18 और कनिष्ठ अध्येता कुल पदों की संख्या 2। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए कृपया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट www.nrsc.gov.in। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी आमंत्रित करती है अतिरिक्त निदेशक पद के लिए आवेदन। भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। योग्यता, अनुभव, बायोडाटा, प्रोफॉर्मा आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की वेबसाइट nepa.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल को आवश्यकता है प्रधान वैज्ञानिकी तकनीकी अधिकारी, प्रधान छात्र गतिविधि और खेलकूद अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा सहायक पंजीयक की। विस्तृत विज्ञापन, योग्यताएं, अनुभव, वेतन आदि की जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, जिसका पता है nitw.ac.in/staff-recruit। आवेदन ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अगस्त 2026। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। www.jiogov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय बाल भवन में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी सूचना। राष्ट्रीय बाल भवन में वेतन स्तर 7 में सहायक लेखा अधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरने संबंधी एक विज्ञापन 2 मई 2026 को रोजगार समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था। इन पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय की गई थी 30 जून 2026, लेकिन इसे अब 30 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये 30 दिन अतिरिक्त गिने जाएंगे इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के। रोजगार समाचार पत्र जो 8 से 14 अगस्त 2026 का है, उससे 30 दिनों के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
12: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
13: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
14: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
15: मैं बनूंगा।
13: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
14: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
13: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
14: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
16: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
17: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
18: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
19: ओम नमः शिवाय।
20: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
19: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
20: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
19: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
20: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
19: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
20: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
19: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
20: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
19: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
20: बोलबम हर

0: बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
2: एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
2: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
0: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक 8 होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लात्विया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491551 पे। मैं अपने देश का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही मैं हमेशा गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, तिरंगा बने कफन यही अरमान रखता हूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ अपने गोपालगंज जिले के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी सभी जिले वासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और आगे

0: फिरोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज जिले के नगर परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी के तरफ से आप सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे ये कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
8: आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध

0: है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन।
8: जिला जदयू के अध्यक्ष श्री प्रमोद पटेल जी के तरफ से आप सभी समस्त जनता जनार्दन को 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनका मानना है कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, तो बस जियो वतन के नाम पर।
10: तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन।

0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया गया तिरंगा, मुख्य समारोह में जिलाधिकारी ने ली परेड की सलामी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा। दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित दो को पुलिस ने पकड़ा। चोरी कांड में चार आरोपियों को हुई सजा। और देवापुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के पांच लोग घायल, पति पत्नी की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से।
1: आज मिंज स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया था। समारोह में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया तथा जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन हमें उन वीर सपूतों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का स्मरण कराता है, जिनके प्रयासों से देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में गोपालगंज के पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों और विभिन्न विभागों के उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। इस दौरान मिंज स्टेडियम के ऐतिहासिक मंच से अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा,
2: क्योंकि सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली और फिर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को जश्न आजादी मनाने का सिलसिला चल पड़ा। आजादी के साथ ही भारतवर्ष प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा एवं दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूने को तत्पर है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि गोपालगंज जिला में विगत वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है तथा इस जिला ने भी प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मद्य निषेध अधिनियम दिनांक 1/4/2016 से लागू है। अपने जिले में अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध अब तक कुल 87 वादों में 123 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। जलालपुर स्थित बलथरी चेक पोस्ट एवं गोपालगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थायी अस्थायी बैरियरों पर भी वाहनों की जांच निरंतर की जाती है। अब तक कुल 84,962 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है एवं अवैध शराब लाए जाने के क्रम में 12,693 वाहनों को जब्त भी किया गया है। इसके साथ ही 7,293 वाहनों की नीलामी भी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक अपने जिले में प्राकृतिक गैर प्राकृतिक आपदाओं से मृत 15 मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से कुल 60 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। आपदा में ही हमारे जिले में बाढ़ एक चुनौती के रूप में हमेशा सामने रहा है। हम लोग तटबंध एवं संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी एवं चौकसी बरतते हैं। वर्तमान में जिले में बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं। बाढ़ से निपटान हेतु जिले में कुल अभी 41 सरकारी नाव, 67 निजी नाव एवं 16 इन्फ्लेटेबल मोटर बोट उपलब्ध है। विभिन्न अंचल एवं जिला मुख्यालय में कुल 46,110 पॉलिथीन सीट्स आज की तिथि में उपलब्ध है। DRDA के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें विगत 6 वर्षों का अगर आंकड़ा देखें तो 3,178 लक्ष्य था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत था, उसके विरुद्ध 2,993 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत 284 सार्वजनिक कुओं और 735 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही 1,254 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। 116 सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड और ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन कराते हुए क्रियाशील भी कराया गया है। हम परिवहन विभाग की बात करें तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 191 सामान्य वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों तथा 11 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों को लाभ दिया गया है। परिवहन विभाग के अंतर्गत हिट एंड रन के 225 मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की दर से भुगतान भी किया गया है। विकसित भारत के 7 निश्चय में प्रथम निश्चय आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत कुल 64,823 आवेदक कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 8,490 आवेदकों के बीच अपने जिले में 203 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। अगर हम समाज कल्याण विभाग की बात करें तो उसके तहत अपने जिले में कुल 2,77,963 लाभार्थी हैं, जिनको प्रति माह 1,100 रुपए की दर से जो पेंशन की राशि उनमें वितरित की जाती है। और संबल योजना अंतर्गत 908 लाभार्थियों के बीच इलेक्ट्रिक बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया जा चुका है। पंचायती राज विभाग अंतर्गत कुल 33,170 जो लक्ष्य है सोलर स्ट्रीट लाइट का, उसके विरुद्ध अब तक 32,600 मतलब 98% सोलर लाइट स्थापित किया जा चुका है और शेष कार्य भी प्रगति पर है। जो हमारे गोपालगंज जिले में 230 ग्राम पंचायत है उसमें 98 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा चुका है।
3: अभी हम लोग 12,484 नया कार्ड बनाने का लक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने ज्यादा 18,747 आवेदन पर कार्रवाई की है और ज्यादातर में राशन कार्ड बनाया है। सहकारिता विभाग की बात करें तो 11,358 किसानों का निबंधन कराया जा चुका है और उसमें 8,962 किसानों को सत्यापन उपरांत विभाग द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। अगर हम योजना विकास की बात करें तो जो सांसद मध्य है एवं राज्यसभा सांसद महोदय के मध्य से कुल 121 योजनाओं के विरुद्ध 11,36,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य कराया गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कुल 1592 योजनाओं के विरुद्ध 104 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूरे जिले में कार्य कराया जा रहा है।
1: इसके बाद गोपालगंज के समाहरणालय परिसर में भी जिलाधिकारी ने झंडा फहराया, फिर अनुमंडल कार्यालय, उसके बाद नगर थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय पर भी झंडा फहराया गया। इसके बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने झंडा फहराया। इससे पहले पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली और तिरंगा झंडा को फहराते हुए उसे नमन किया और इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों का उत्साह वर्धन किया और जिन पुलिस कर्मियों ने बेहतर सेवा प्रदान की है उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस लाइन के मंच से पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गोपालगंज वासियों को संबोधित करते हुए कहा,
4: छाव में खड़े तो यह दिन मात्र पन्नों पर दर्ज एक तारीख का उत्सव नहीं है बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण। हमारा राष्ट्र कोई कागजी नक्शा या पत्थरों की एक इमारत नहीं है, राष्ट्र हमारी सांसों का ही विस्तार है। जब हम अपनी इस भारत भूमि के अंश नारायणी के पावन तट और थावे वाली माँ की इस पवित्र धारा पर तिरंगा को फहराते हुए देखते हैं तो अनायास ही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वे दिव्य स्वर हमारी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगते हैं। इस पावन भूमि पर सेवा करते हुए पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र को बहुत करीब से समझने का प्रयास हम सभी ने किया है और यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। गोपालगंज केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि यह एक सांस्कृतिक और औद्योगिक संभावनाओं का एक जागृत केंद्र है। पिछले कुछ समय में गोपालगंज पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि यहाँ कानून का राज हो और जनता भयमुक्त महसूस करे। गोपालगंज पुलिस ने बड़े बड़े भूमाफियाओं, गौ तस्करों, ट्रक तस्करों और जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की कमर फोड़ी है। अपराधियों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसते हुए अब तक 20 से भी ज्यादा बड़े अपराधियों और माफियाओं की करीब 200 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने हेतु आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारा कार्य ही जनता का विश्वास जीतना है। इसके लिए सभी पुलिस कर्मियों को सभी पुलिस अधिकारियों की विशेष कक्षाएं और बैठकें ली गई हैं जिनमें उन्हें यह सिखाया गया है कि हमें हर आम नागरिक से कैसे बात करनी चाहिए, हमारे पास आने वाले हर पीड़ित को सम्मान कैसे देना चाहिए और कैसे पूरी सहृदयता से उनसे पेश आना चाहिए। पेशेवर अपराधों और जघन्य मामलों में हमारी टीमें लगातार जुटी हैं। हम शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते हैं बल्कि वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग पर जोर देते हैं।
1: मुचका गांव थाना की पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। कांड की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम के साथ मिलकर आवश्यक साक्ष्यों का जांच पड़ताल किया गया, एकत्रित किया गया और इसके कांड दर्ज करते हुए मुचका गांव पुलिस ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इस कांड के आरोपी दीपक कुमार राम को गिरफ्तार किया, जो उचका गांव थाना क्षेत्र के तुलसिया के राजेंद्र चौधरी का पुत्र बताया जा रहा है। इसके साथ एक विधि विरुद्ध बालक को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। अब इन दोनों आरोपियों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने चोरी के एक मामले में 4 आरोपियों को सजा सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 4 आरोपियों को चोरी के मामले में दोषी पाते हुए इन्हें सजा सुनाया कांड के प्राथमिकी आरोपी भोला सिंह, गौतम सिंह, रामजी सिंह ये तीनों अचरज सिंह के पुत्र हैं और पारस सिंह ये स्वर्गीय जमुना सिंह के पुत्र हैं। ये सभी बलभद्रपट्टी थाना उचका गांव के निवासी हैं। इन पर एक चोरी का मामला दर्ज था और इसी मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को ₹1,000 का अर्थ दंड लगाते हुए सजा सुनाया, जिसके बाद अब इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर मिर्जापुर ओवर ब्रिज के पास NH-27 पर एक भीषण और हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई और इसी परिवार के बेटा बहू सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई और घटना में सवार 5 अन्य लोग जख्मी हैं। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतकों में सिवान जिले के गोरिया कोठी गांव निवासी राजेंद्र मुसहर उम्र 55 वर्ष और उनकी पत्नी सोना देवी उम्र 42 वर्ष बताया जा रहा है। ये दंपति अपने बेटे और बहू के साथ गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव में अपने संधी के निधन की सूचना मिलने पर शोक व्यक्त करने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गोरिया कोठी से आए थे। शोक संतप्त परिवार को संतावना देने के बाद सभी लोग ऑटो में सवार होकर गोरिया कोठी के लिए निकल पड़े। इसी बीच बरौली देवापुर के पास जैसे ही इनकी ऑटो गाड़ी पहुंची थी, एक अनियंत्रित ट्रक ने इनकी ऑटो को जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। बेटे, बहू, पोता, पोती समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां राजेंद्र मुसहर और उनकी पत्नी सोना देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। आज दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इनके परिजनों को सौंपा गया है और फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। आज रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर भी तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान रेडियो रिमझिम के तमाम श्रोतागण मौजूद थे। रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर FSL के जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार राय ने झंडा फहराकर गोपालगंज वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
5: आज गोपालगंज के हजियापुर NH-27 पर स्थित जदयू पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने राष्ट्र ध्वज को फहराया तथा तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के बीच तिरंगे की आन बान शान को नमन करते हुए सशक्त, शिक्षित और विकसित भारत के निर्माण के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। इस दौरान पार्टी के भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
1: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
0: स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया गया तिरंगा। मुख्य समारोह में जिलाधिकारी ने ली परेड की सलामी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा। दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित 2 को पुलिस ने पकड़ा। चोरी कांड में 4 आरोपियों को हुई सजा। और देवापुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, पति पत्नी की मौत।
1: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
12: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
11: और लाइट बिल के
12: अब 0 रुपए कैसे दूं?
11: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
12: पक्का।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सेवन सी डी ट्रिप।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

ग्राम पंचायत राज गौसिया के मुखिया रागनी मिश्र, पुत्र वधु राधा रमन मिश्र, परमंडलीय संयोजन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सारण के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा, तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, अरे वार्ड नंबर 2 से गोपालगंज।
1: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
0: बस बहुत बढ़िया है जी। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं।
0: जी, आप लोग आपका तो ये रेडियो का जो आदमी सुन करके बिल्कुल हमेशा टाइम का इंतजार करता रहता है कि हाँ अभी टाइम होगा, अभी कॉल करेगा, ये प्रोग्राम अभी सुनेगा, बहुत अच्छा है। सुबह का प्रोग्राम भी तो जो है वो आदमी को जिंदगी के लिए एक नया ढाल बन गया है, जो प्रवचन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हमको गाना सुनना है, अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है।
1: ओके, हेलो जी जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो आप आए और जितने भी ये फिल्म का दोस्त साथी हैं, जितने भी आदमी सुनते हैं, उन सबको सुनाना। ठीक है
1: जी। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो बस सही है, मौसम जो है मौसम बना हुआ है, बारिश का ऐसे संभावना लग रहा है कि शाम तक बारिश होएगा, क्योंकि ये भादो के जैसा नहीं लग रहा है, एक कुवार का जैसा लग रहा है। घाम में काफी मतलब वो है, थोड़ा सा भी धूप लगता है ना तो लगता है कि बस कमरा सूख गया। सही मौसम नहीं है,
1: ऐसे लग नहीं रहा जैसे कि सावन का महीना चल रहा है।
0: आप ही देखिए ना, बाहर निकलकर देखेंगे तो आपको खुद अंदर का अपना बता देगा कि सावन भादो के जैसा नहीं लग रहा है, ये कुवार के जैसा लग रहा है। कुवार में जैसा धूप निकलता है ना, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं किया था कि कमरा कब सूखता है, तो बताने वाला बताया कि कुवार में, आंसर सही हो गया। यही बात है कि दो मास लग गया था ना, दो मास लग गया। अगर सीधा सीधा महीना जोड़ा जाए ना तो ये कुवारी है। ठीक है, मैं रंजी गाना सुना दीजिए, आज सुनाएंगे कि कल?
1: कोशिश रहेगा कि आज ही चले। ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
3: जी कैसे हैं सुनील जी?
2: बढ़िया है मैडम जी, और बरसात हो रही है और आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
3: अच्छा जी, ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
3: अच्छा, तो बारिश हो रही है अभी उधर?
2: जी जी जी, बारिश, रात का ही पानी गिर रहा है और अभी पानी गिर रहा है।
3: अच्छा, हमारे तरफ तो बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
2: जी हम आपके इधर गिर रहे हैं क्या पानी?
3: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, धूप निकला हुआ है बहुत तेज।
2: अच्छा, उधर धूप निकल रही है उधर?
3: जी।
2: अरे वाह, हमारे यहाँ तो कल से आपको ठंडा ही हो गई, हमने पंखा कूलर सब बंद कर दिए हैं, अब तो नॉर्मल है।
3: अच्छा, तो कहीं लोग बारिश से परेशान है, कोई कहीं गर्मी से?
2: जी जी
3: जी। तब खाना वाना हो गया आपका?
2: जी अभी नहीं हुआ है।
3: अच्छा,
2: और भारती जी बोल रही है कि सोनी जी?
3: नहीं,
2: मनोरमा जी।
3: जी जी
2: जी, बहुत दिनों में बात हुई है मेरी आपसे आज।
3: जी और क्या है ना, भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी बीच में।
2: और मैडम जी, पिक्चर का नाम है आज दीवाना मुझसे नहीं कोई।
3: ओके, और गाने के बोल?
2: गाने के बोले सारे लड़कों को कर दो शादी, बस एक को कुंवारा रखना।
3: ओके, और गाना डेडिकेट किया?
2: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको है, भारती मैम को है, सोनी मैम को है, और अपने गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ती है, इन सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितने भी ये रेडियो सुन रहे हैं उनको। और ये प्ले कब होगा मैडम जी?
3: पूरा कोशिश रहेगा कि गाना आपका आज ही प्ले हो।
2: जी जी, धन्यवाद।
3: तो गाना प्ले करते हैं
2: जी।
3: ये सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिम 90.4 FM में।
1: रिश्मा कौन सी से?
0: जी, क्या हाल चल रहा रिश्मा जी?
1: ठीक बा, आप बताए?
0: जी, हमरो बढ़िया बा।
1: तो कक कल बनी नु?
0: रहल भाई ला।
1: हां, ये हो गल बा, तबे तो ठीक बा।
0: बिल्कुल बढ़िया बा।
1: मुनारवा में?
0: जी,
1: सुन बनी।
0: जी, बढ़िया बानी। रुवा ठीक बनी नु?
1: हां, ठीक बनी।
0: चले, बढ़िया की बात है।
1: आज गाना सुना दे।
0: बता दी।
1: हारे हारे हम तो दिल से हारे।
0: काई दो लाइन रुवा गा के बता सकते नहीं?
1: गा के बता दे।
0: बिल्कुल।
1: अरे याद नहीं गया, थोड़ा सा याद रहा।
0: हाँ हाँ, उतने गई ना।
1: हरे हरे हरे हम तो दिल से हरे। इतना याद है मैडम जी?
0: ये कोनो बात नहीं के। और ये गाना रहा क्यों के सुनवाई के भी चाहता नहीं?
1: और सुन ले, मुझे इतना सुन तो सब कोई सुनिए।
0: चलो बढ़िया बा।
1: अच्छा मैडम जी, अगले साल गाना तो मना के बजू है ना? सुनो जी, गाना जब कॉल रहो रिकॉर्डिंग कर रहे तो ना बजू है।
0: शुक्रवार के हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं।
1: शुक्रवार को गिला।
0: अच्छा,
1: जब हमें गाना हम फरमाश बोलो रही बहुत दर्द दिल प्यारे हो दिल टूटा जानी।
0: हम वैसे तो गाना तो सब प्ले कर ले रही, मत कहीं रुआ ना सुन पाई लेते हम।
1: कहियो हो सकेला, ठीक है, कहा तुम? लेकिन चालू करूंगी, काम से चालू करें सब जगह, कुछ भी ना वही चालू करेंगे। थोड़ा 10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा काम में रहने का।
0: हाँ हाँ, वैसे ना तो
1: जैसे याद पर काम तो होगा जल्दी चालू करे, फिर आगे चालू करे।
0: अच्छा, चलिए। तब घर परिवार में सबको ठीक बनो?
1: जी मैडम जी, सब ठीक बा। अपन बताए?
0: जी जी, यहाँ पे भी सब ठीक बा।
1: घर घर सबको ठीक बा?
0: सबके बढ़िया बा।
1: हम तो सबको ठीक बा।
0: हाँ हाँ, बढ़िया बा।
1: पार्टी में आ गए बनी?
0: चलिए ठीक बा। तो और गाना प्ले कर पानी?
1: जी मैडम जी, बजा दे। आज तुम बजा दे तो ठीक है।
0: जी जी, पूरा कोशिश रही।
1: हाँ ठीक बा,
0: ठीक बा। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैडम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: आज तो बड़ी खुशी की बात है कि एक ही बार कॉल लगाया लोग।
6: जी जी
5: हाँ, नहा करके आए थे। जानते हैं कि आज पंच खुला है, एक महीना के बाद आज नहाए है। तो सोचा कि अब तो टाइम नहीं है, लगा कर देखे के लगता है कि लग गया। बोलिए समाचार, बोलिए अपना।
6: जी सब बढ़िया
5: ठीक है ना।
6: जी जी,
5: आज तो घाम हुआ है।
6: गर्मी तो बहुत है।
5: गर्मी है आज। गर्मी है आज। गर्मी में गर्म पानी से गोसल किए।
6: अब क्या करिएगा, जब व्यवस्था दी तो नहाना।
5: और सब सुनाइए।
6: जी सब बढ़िया। आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
5: हमारा नाम है मैनुद्दीन अहमद। पहचानते नहीं है, बराबर करते हैं।
6: जी जी पहचानते हैं, लेकिन हमारे श्रोता लोग तो जाने।
5: हाँ हाँ, मैनुद्दीन अहमद, घर जुमरिया, उसका गांव थाना में पड़ता है।
6: और सब बढ़िया ना।
5: हाँ हाँ,
6: खाना वाना हो गया ना।
5: हाँ अभी तो खाना खाए।
6: ये बढ़िया,
5: अभी खाना खाए है, सेब खाए।
6: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
5: हमारा फरमाइश ले लीजिए, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरी फिल्म का।
6: और ये आप सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
5: कब सुनाइएगा?
6: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे आपका गाना।
5: अच्छा ठीक, वो उसने तो हमें को बज गया, सुन लिया। सुबह भी बज गया, सुन लिया, दो बार आ गया। ठीक है,
6: वालेकुम अस्सलाम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: थैंक यू। मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से बोल रहा हूँ। जी मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भारती जी?
1: नहीं जी, मैं मनोरमा।
0: अच्छा, मनोरमा जी को।
1: जी जी
0: जी, अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुनते हैं हम। तो गाना हमको सुनना है,
1: बता दीजिए।
0: लास्ट कॉल है मेरा अब शायद।
1: नहीं
0: अभी है कॉल, इसके
1: कॉल है
0: और गाना है, और थोड़ा गुनगुना कर बता देते हैं।

0: यही गाना है।
1: ओके, वैसे अपना नाम क्या बताया?
0: निसार अहमद, लकड़ी दरगाह, जिला सिवान।
1: ओके, तो ये आप गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: पहले तो आपको, भारती जी को और सोनी मैडम जहाँ भी हैं, ये गाना उनके लिए भी है और जितने भी रेडियो इंजिन सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए और अपने फैमिली के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: थैंक यू
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।

0: डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
1: जी सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजन सुनने वाले श्रोताओ हैं सभी को, और हम लोग थनाओ से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
0: तो ये आप रेडियो रिंकिंग को कैसे सुनते हैं?
1: मोबाइल से सुनते हैं,
0: मोबाइल ऐप के जरिए।
1: ऐप के जरिए हाँ, और रेडियो हम लोग का सर थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
0: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम धनाव थाना नासरीगंज जिला रोहतास बिहार से, जिला रोहतास हम लोग हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी
0: जी, रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में
0: जी। इसलिए भी तो धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम ओढ़ामनिया, पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: जी कैसे हैं संजय जी?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी थोड़ा नहीं कहा जाता है, लोगों ने कहिए ना करल छोड़े हैं।
1: जी जी गर्मी तो बहुत।
0: जी जी बाकी हाल खबर ठीक है, बढ़िया है। और कहिए ना, रूम में बैठे हैं, आप आ रहे हैं, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। और सब उधर के मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, आजकल होता है कि नहीं बरसात?
1: तो बहुत है, धूप भी निकला हुआ है।
0: जी जी हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश भी रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था, लेकिन 4 रोज से गर्मी चल रहा है। गर्मी तो उस समय था, लेकिन फिर भी कहना था मतलब क्या है कि थोड़ा पानी गिरला पर थोड़ा राहत हुआ है, थोड़ा राहत रहा, लेकिन फिर भी पानी रुका रुका फिर भी गर्मी ज्यादा हो गया है। प्रकृति के नियम है, चलता रहता है। आज गाना सुना दीजिए,
1: बता दीजिए।

0: संक्रांति।
1: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: जी जी चलिए आप कहती है तो हम लोग थोड़ा गुनगुनाते हैं, लेकिन हम लोग तो गाता है नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गुनगुना लेते हैं ताकि ट्रैक मिल जाए बढ़िया से आप लोग उतने में सरल हो। सबसे तो पहले कुछ मित्र की याद करना चाहता है, सबसे पहले आपको वो रेडियो इंजन संपन्न परिवार को और दोस्त में हो गया सिकाना से मामा साबी जी, रामेश्वर कुशवाहा जी, अलिमा कला बैकुट नमस्ते, नरेश सोहनी, दीपक दास, उदय बहन ठाकरे, जीना सा, धर्मेंद्र यादव उर्फ मिथुन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, मदन राम भैरवंशी, भैरवंशी, राजेंद्र यादव भाटी, सतलाल गौतम, उत्तर प्रदेश मऊ से, सलार अंसारी, मोहम्मद सलार अंसारी, बजवलिया का विशेष उनको, संदिका सहा शोक, हरिंद्र प्रसाद यादव मिकुटा, कौशल किशोर शराब, जितेंद्र सर समर्थन, नीरज गुप्ता, सुरोज श्रीवास्तव, हमारे नाम से देने पर तमाम उसको सुनाते हुए अभी आपसे चलेंगे। नमस्कार
1: नमस्कार। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494 से 11। जी हाँ, 80029494 से 11। तो चलिए बढ़ते हैं।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। गाना सुनना चाह रहा हूँ
1: जी। गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुनना है बूढ़े राजा के बाबा धाम का गाना।
1: जी बता दीजिए।
0: बूढ़े राजा गाना बाबा धाम के नाम का।
1: कौन सा आवाज कट के आ रही है?
0: बाबा धाम के गाना।
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के बूढ़े राजा कौन गाना बजाई? नाव का गाना बजाई ना।
1: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में?
0: अरे बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में बजाइए।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है
0: जी?
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
0: जी।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनते हैं।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
0: जी थैंक यू, हम कैसी है?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
0: नेहा।
1: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
0: कासा मुसाफिर।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी आराम करेंगे।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी।
1: ये बढ़िया है। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: सावन मजा न देगी,
1: चूड़ी मजा न देगी, कंगन न मजा देगी।
0: ओके।
1: और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको और जितने भी रेडियो रिंगिम सुनती हूँ सभी को।
1: ओके। वैसे नेहा जी, आप ये रेडियो रिंगिम को कैसे सुनती हैं?
0: जी ऐप से सुनती हूँ।
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की हैं?
0: जी।
1: ये बढ़िया, मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
0: 2000।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगिम का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो रिंगिम?
0: हेलो माय चॉइस और क्रिसमस फरमाइश।
1: चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिंगिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार।
7: हेलो
6: मैम, हम बोल रहे हैं ना।
7: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: अपना सुनाइए।
7: जी मेरा भी बढ़िया।
6: अरे हमारे से कोई गलती हो गया है क्या? कितने कॉल किया, 312 कॉल किया, दो बार लगा उसके बाद ही काट दिया गया।
7: नहीं नहीं, कॉल कटा नहीं, हो क्या ना नेटवर्क इशू की वजह से कट जाता है कभी कभी।
6: तो सोचते कि कोई भारी गलती हो गई है हमारे।
7: नहीं नहीं है, कोई बात नहीं है।
6: बहुत परेशानी होती है कॉल लगाने में, है ना, तो ऐसा लगता है कि बना हुआ घर गिर गया। हाँ, अगर विश्वास न हो तो आप एक बार लिसनर बन के कॉल करके देख लेना।
7: नहीं, हम
6: इतना परेशानी होती है,
7: तब तक दूसरा।
6: हाँ, 300 बारी आज कॉल किया और दो बार लगा, इसके बाद कट गया।
7: कोई ना,
6: मैं सोचा कि लगता है कोई गलती हो गया है, बोलूंगा कि मैम देखिए हमारी नंबर ही ब्लॉक कर दो, क्या फायदा।
7: नहीं नहीं, ऐसी बात।
6: और सब अपना सुनाइए।
7: जी जी, सब बढ़िया।
6: इस बात को अपने दिल से मत लेना, मैं ऐसे बोल दिया, बहुत परेशानी होती है।
7: समझते हैं।
6: हाँ, तो इस बात को आप दिल से मत लेना, क्योंकि किससे कहेंगे, आप ही से कर सकते हैं ना।
7: जी बिल्कुल।
6: हाँ, तो वही बात है। शुरू से आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शुरू से रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे हैं।
7: नहीं नहीं, आज मेरा रिकॉर्डिंग है।
6: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली, पहचान नहीं रहे क्या? तो मैं ऐसे भी सोचा की आज लगता है मनोरमा मैम है, इसीलिए लंबा बात करने का अलग तरीका है, इसलिए थोड़ी लगता है बिजी ऐसा जा रहा था ना, लग रहा था कि मनोरमा में नहीं है आज। क्योंकि आप लंबा बात होते है ना। चलिए, आप पहले का भी रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ एक ही हुई है, आज भी एक रिक्वेस्ट ले लीजिए, भोजपुरी ही है। मैं ज्यादा करके भोजपुरी देता हूँ, लेकिन बढ़िया देता हूँ, कोई अश्लील गाना नहीं। तो आज भी एक है गोटू राजा के, है गाने का बोल है, खाली रथे कर और ही काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा।
7: ये आप गाना एक बार गा के बता सकते?
6: खाली तीरथ है काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा। बस इतना ही।
7: बहुत अच्छा गा लेते हैं
6: मैम। मैं तो बहुत अच्छा गाता ही था, थोड़ी टेंशन में आजकल जी रहे हैं साल डेढ़ साल से, इसलिए थोड़ी वो, नहीं तो मैं तो गांव में एग्जाम जो होता है ना 24 घंटा का, उसमें मैं गाता था, मेन में मैं गाता, पर पानी की वजह से थोड़ी टेंशन में। तो हम तो गा तो बहुत अच्छा लेते हैं, संगीत हमें बहुत प्रेरणा, संगीत बहुत प्रेम है, इतना मूवी से मुझे प्रेम नहीं है, मैं संगीत प्रेम, संगीत सुनकर मैं रातों भर जगा रह जाऊंगा, इतनी प्रेम है। हाँ, इसलिए थोड़ी सी हमारी बातों पर गौर करना, बहुत परेशानी हो आप लोगों से बात करने के लिए।
7: जी जी।
6: गाने सुनने का माध्यम तो बहुत है, सुन सकते हैं जैसे मर्जी, लेकिन एक आप लोगों के द्वारा जो गाना बजता है उसका एक अलग ही है। तो ये कब तक बज जाएगा
7: ये गाना आपका? कल बजेगा, लग रहेगा कि आज ही बजे।
6: नहीं, पिछला भी आपका एक बार ही है, गाना मेरा सुना दीजिए।
7: गाना
6: फिर करते हैं आपसे, बात करके बहुत अच्छा लगा।
7: गाना भी करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ओके।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या खैरियत है
0: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी अच्छा। आपकी तरफ के मौसम कैसा हुआ है?
0: धूप से निकला हुआ
1: जी, गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: आज गर्मी है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: हाँ, माझा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, और आपका नाम?
1: मेरा नाम साई पलक है।
0: साई पलक
1: जी,
0: बहुत प्यारा नाम है
1: जी।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी आपके पास कॉल कर रहे थे, एकदम बिजी बता रहा था लाइन, तो क्या कि अभी लगा है कॉल।
0: चलिए, अब कॉल लग गया तो अपनी फरमाइश बता दीजिए।
1: क्या मौसम आया है?
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
1: नहीं, ये मतलब इतना ही याद है क्या मौसम आया है? सुना दीजिए गाना, सर आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी डिजिटल को डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है। क्या

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
3: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल।